हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि। तदनुसार 26 जुलाई

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने वाले हैं। और अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।

0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले आइए करें वंदना इस पावन धरा की। ये देश जहाँ की माटी है चंदन, आइए करें उस पावन धरा का नमन।

0: प्रभु श्री राम को समर्पित इस मधुर भजन के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:30 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है पताल मा रोग नियंत्रण, वाचन स्वर रुपेश कवर का।
1: राम राम, जय जोहार। खेती किसानी के माध्यम से ही हमार पूरा घर के परिवार ह चलथे। नेता हिकारी, फिर दवाई पानी और आए दिन साल भर में दू चाठक घर में छोटे बड़े बूता काम होत रहते। ऐसे बेरा में सबसे ज़्यादा हमारे आवश्यकता होते पैसा के, रुपया के, जो हमारे कारण गठरी में बिल्कुल नहीं रहे। आए दिन अपन हमारे आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कथी ले यही कथन कि जितके ज़्यादा होए हम खेती किसानी के संगे संग अक्तिहा बूता काम हमारा करना चाहिए। संगवारी हो, अभी बेरा हमारे बात करी तो अगर हम खेती किसानी के संगे संग बाड़ी बकरी अगर चेत कर हन तो अवैया बेरा में हमन दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। आज अपन कर खेती की बात में गोड़ बात करी आज पताल के खेती के। किसान भाई, पताल के खेती हमार बार नगदी फसल है और अपन जानते हवा बढ़िया सुचारू रूप से सीजन के हिसाब से पताल खेती पद्धति के हिसाब से करत हन तो कहीं ना कहीं हमन पताल के खेती में दोहरा से दोहरा आमदनी हमन कमा सकत हन। आज भी अपन ला हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कति ले सफल किसान भाई मन के अनुभव बतातन कि कैसे हमन पताल खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमावत हैं। तो आवा संगवारी हो, आज हमने बात करी खेती के बाद में पताल की खेती के। संगवारी हो, पताल खेती पर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु हो सबसे उपयुक्त हवा, जैसे गर्म मौसम, बारोई माटी, डुमांड माटी, जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संगवारी हो, ऐसे भूया के हमल चयन करना चाहिए जमा पानी की निकासी और सिंचाई आसानी रूप से हमन कर सकें। जहाँ पानी के ठहराव हो ही वहाँ हमार जो पताल खेती है नुकसान हो के संभावना घलो रहते। किसान भाई, वो अपन ला बता देते हैं कि अभी के जो महीना हमें जुलाई से अगस्त तक हम एक अच्छे से पताल खेती कर सकते हैं। काबर के अभी भुइया हाँ कंचा कंचा हवा, ये बेर हमारा पानी ज़्यादा छिड़काव करे के या सिंचाई करे के आवश्यकता बहुतेज कम रहते हैं। तो अभी अगर हम पताल खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं अवैया बेर में पताल के अच्छा कीमत पा सकते हैं और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार कर सकते हैं। रोपाई की बात करी संगवारी हो, नर मादा पौधा दोनों ला हमला लगाए पड़ते। 10 मादा और 1 नर पौधा हमला बिल्कुल लगाना चाहिए। दूरी की बात करें संगवारी, कतार ले कतार 2 मीटर पौधा के पौधा की दूरी हमला 1 मीटर।

0: पीटर हमला रखना चाहिए। अगर हमन ढेखरा या मचान के पद्धति की बात करें संगवा, तो बेल चढ़ाए पर हमल बांस या मचान हमला बहुत ज्यादा लगाना चाहिए। गांव में आज भी देखी तो जिसे छोटे छोटे हमर किसान रहते हैं, काय करते कि ढेखरा के माध्यम से भी पताल खेती करते, उमा भी हमन पताल के हमन दोहरा से दोहरा आमदनी कमाथन। कोनो भी फसल अपनावतन किसान भाइयों, तो वहाँ विशेष करके हमला खातु के विशेष सावधानी हमला देना चाहिए। अभी सरकार भी चाहत हवे कि जितके ज्यादा हो हमन रासायनिक खाद ला छोड़ के जैविक खाद प्राकृतिक खेती उपयोग करी, ताकि भूइया की उपजाऊ क्षमता ला हमन बढ़ा सकें। आज भी हमारे कतेक किसान भाई मन हवे जे मन जैविक खेती रासायनिक खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते। किसान भाइयों, पताल खेती में हमन ला 15 किलो प्रति एकड़ के पाछू में पहली बेरा में हमन ला देना चाहिए। खातू माटी की बात करें किसान भाइयों, तो पताल खेती में अगर हमन पहली जोताई घानी गोबर खाद डाला थन प्रति एकड़ पाछू, तो कहीं न कहीं हमला पताल खेती में दोहरा से दोहरा आमदनी हमन कमा सकतन। एकर उपज की बात करें किसान भाइयों, 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ में हमन अच्छे से आमदनी कमा सकतन। रोग की बात करें किसान भाइयों, तो पत्ती धब्बा रोग माइकोजेब 2.5 लीटर घोल मिला के अगर हम छिड़काव करतन, तो कहीं न कहीं हमन एमें को जो बीमारी फैले है ओकर से मन निदान पा सकतन। संगवारी हो, आप मन बता देतन कि आज केंद्र सरकार राज्य सरकार कति ले अबड़ कन ऐसे योजना संचालित हवे जेकर माध्यम से मन अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार कर सकतन। पताल खेती आप मन अगर करना चाहता हवा, तो आपके लखठा के जो उद्यानी भाग हवा वहाँ के अधिकारी कर अपन संपर्क करके पताल खेती के बारे में जानकारी ले सकत है। संगे संग जौन राष्ट्रीय बागवानी मिशन हवा ओकर योजना के माध्यम से अपन पताल खेती में दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत है। किसान भाई वो आप मन बता देतन कि उद्यान विभाग कति ले आप मन ला एमा ड्रिप बर संगे संग बोर बर और आप मन ला जोन आपके बारी हवा ओकर रूंधा बांधा करे पर सरकार कति ले योजना घलो हवे जेकर माध्यम से आपके जो खेत है ओकर अच्छे से तैयारी कर सकत है और पताल खेती करके अपन दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत है।
1: खेती की बात अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:35 हुए हैं और अब प्रस्तुत है श्रीराम चरित मानस गान।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खू, रीछ बाघ

भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: पदस्थ अधिकारी के मकान के सामने जाने वाली नाली में जगह जगह इतना कचरा फंस गया था, कीचड़ और अन्य गंदगी ऊपर की ओर फैलने से रास्ते में आगे पीछे खूब सड़ांध फैल रही थी। उन्होंने खुद नाली की सफाई करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों ने उन्हें इज्जत देते हुए उनसे कहा, अरे आप यह सब क्यों कर रहे हैं, यह काम जमादार का है, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। इस पर अधिकारी महोदय ने जवाब दिया, मेरे हाथ इतने निरीह नहीं हैं कि कीचड़ आदि इन्हें बर्बाद कर सके, ये साबुन से एक मिनट में जैसे के तैसे साफ हो जाएंगे। बात जची, सचमुच यह क्या फालतू का नियम बना रखा है कुछ अविवेकी लोगों ने कि गंदगी की सफाई का काम सिर्फ जमादार लोग करेंगे, मानो जमादारों के हाथ किसी और मिट्टी के बने हों, जबकि सच्चाई यह है कि पैदा सब लोग बिल्कुल जमादारों और उनके बच्चों के समान ही होते हैं, सब के सब बिल्कुल नंगे। यदि सफाई करने वाले व्यक्ति किसी कारण से कुछ दिन हड़ताली तौर पर नहीं आते हैं और आप खुद सफाई करने के काम को इतना हल्का मानते हैं कि उससे आपका स्तर एकदम ढह जाता है, तो आपके सामने यही विकल्प बचता है कि आप सड़ांध को सूंघते रहिए, क्योंकि आप अपना मकान तो उठाकर किसी और जगह ले नहीं जा सकते। यहाँ पराधीन सपनेहू सुख नाही को व्यापक संदर्भ में सोचा जा सकता है, जिसका भावार्थ निकलता है कि सुखी रहने के लिए स्वाधीनता अनिवार्य है, लेकिन आदमी का हर मामले में स्वाधीन और आत्मनिर्भर रहना संभव है क्या? नहीं। तो फिर यह कि जहां जहां भी वह पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ सकता है, वहां वहां उन्हें तोड़कर अपने को परवशता अर्थात गुलामी से मुक्त रखना सीखे, जबकि उपर्युक्त प्रकरण में वो ऐसे लोगों का गुलाम बन जाता है उन पर पूर्णतः निर्भर होकर जिन्हें वो अपने से बहुत छोटा मानने का भ्रम और दंभ पाले रहता है। स्थिति यह है कि नगरों की आधी बस्तियां गंदी रहा करती हैं, जिसके लिए जिम्मेदार प्रायः सभी नागरिक हुआ करते हैं। अब जरा यह सोचिए कि क्या यह बात अनैतिक नहीं है कि गंदगी हम लोग करें और सफाई दूसरे लोग करें।

0: इसी प्रकार गंदगी सब लोग करें और सफाई कुछ लोग करें। सफाई करना किसी भी पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि से गंदी बात नहीं हो सकती। माँ बच्चों की और नर्सें मरीजों की परिचर्या में क्या कुछ नहीं करती। हम भी अपने शरीर की हर गंदगी को खुद साफ करते ही हैं। इसलिए यदि हम झूठी शान और भोंडी परंपरा को छोड़कर आवश्यकता अनुसार आसपास की भी थोड़ी बहुत सफाई करने की हिम्मत जुटा लें तो हमें उससे तत्काल मिल सकने वाला सुख ढूंढने के लिए किसी और के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा। यदि आपको लगे कि आपके पास समय नहीं है तो इस सब के लिए गांधी जी को याद कर लीजिए, जिनके पास आपकी तुलना में निश्चित रूप से बहुत कम समय था।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना सुनिए। फोन करें, गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 सोमवार प्रातः 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा, क्रिएचर। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 0775226592। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:50 हुए हैं। और अब कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज सुबह 10:55 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। रायपुर केंद्र से इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे मन की बात का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव, भाग एक, डॉक्टर देवेंद्र सिंह से सुप्रिया भारतीयन की बातचीत, प्रायोजक जीआई फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों, जिसमें सामायिक चर्चा होगी तूफानों से हमारी रक्षा कैसे करते हैं मैंग्रोव, और चिल्ड्रंस वैली स्कूल के बच्चों पर आधारित प्रायोजित कार्यक्रम। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 10:30 का समय होगा नए तरानों का।

आज सुबह 9 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग, प्रायोजक विधि एवं न्याय मंत्रालय। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे सुबह 9:15। रायपुर केंद्र से प्रसारित मन की बात के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद के बाद हम दोबारा जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

रात 8 बजे आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से रिले मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण। रात 8:30 का समय होगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से कानून की बात, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, श्री चंद्रहास साहू अधिवक्ता ग्राम चंदन बिरही तहसील गुरूर जिला बालोद से। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा नान्हे लेकन के अच्छा पोषण जरूरी है। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे आप मन के गीत। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी भाव और सामायिक सुझाव का। शाम 6:20, शाम 7 बजे और शाम 5:35 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुन। शाम 5:35 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे रात 9:15 पर। रायपुर केंद्र से शाम 6:05 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। हम आपको एक बार फिर बता दें आज रात 8 बजे रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से सुबह 11 बजे। रायपुर केंद्र से तुरंत बाद आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:55 होने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिनशर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीप्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरम् उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय, विश्वासाय, निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानां

0: आधिकारिकयात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिकसोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीयराष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिकयात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्रयात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुः विभिन्नदेशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्ताः अकरोत्। व्यापारमञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीयप्रवासिसमुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिकपरीक्षा अनुचितसाधननिवारणसंशोधनविधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभाकार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिकपरीक्षा अनुचितसाधननिवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे, परीक्षासु च अनुचितसाधनप्रयोगप्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय, दोषिषु च कठोरतरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य पूर्वाह्णे 11 वादने स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-अधिकैकशतं संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमन्त्रिकार्यालयः, सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं 4:30 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन 26-अधिक-2000तमस्य विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-प्रतिविंशतेः पुरुषक्रिकेटस्पर्धायां भारतेन 30-स्पर्धात्मकशृङ्खलायाः द्वितीयक्रीडायां जिम्बाब्वेदलं 90-धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी

0: दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज 26 जुलाई है और आज का यह दिन हम एक गौरवपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हर भारतीय के दिल में देशभक्ति, सम्मान और कृतज्ञता की भावना जगाता है। यह दिन है कारगिल विजय दिवस, जिसे हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन

करने का अवसर है, जिन्होंने वर्ष 1999 में कारगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों को परास्त कर भारत का तिरंगा गर्व से लहराया था। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में साहस और पराक्रम की ऐसी गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वर्ष 1999 में पाकिस्तान समर्पित घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया। इन ऊंची पहाड़ियों से वे राष्ट्रीय राजमार्ग और सामरिक क्षेत्रों पर नजर रख सकते थे। स्थिति गंभीर थी, लेकिन भारतीय सेना ने चुनौती को स्वीकार करते हुए ऑपरेशन विजय शुरू किया। हजारों फीट की ऊंचाई, कठिन मौसम, दुर्गम पहाड़ियां और दुश्मन की मजबूत स्थिति जैसी तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। लगभग 2 महीने तक चलने वाले संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए एक एक चोटी पर फिर से कब्जा किया और अंततः 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की और पूरे देश ने राहत और गर्व की भावना के साथ इस ऐतिहासिक सफलता का स्वागत किया। तभी से हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, कारगिल युद्ध के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की रक्षा की। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और अनेक ऐसे वीर जवान, इन सैनिकों ने भारतीय इतिहास में स्वर्ण अवसरों पर इनका नाम अंकित है। कैप्टन विक्रम बत्रा का प्रसिद्ध उद्गार "ये दिल मांगे मोर" आज भी युवाओं में जोश और देशभक्ति का संचार करता है। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य जीत का उत्सव नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक किन कठिन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, तब हमारे जवान बर्फीली चोटियों, रेगिस्तानों और दुर्गम सीमाओं पर दिन रात देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यह दिन हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। देशभक्ति केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक बनकर, कानूनों का पालन करके, समाज में सद्भाव बनाए रखकर और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देकर भी हम अपने सैनिकों के त्याग का सम्मान कर सकते हैं। श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस हमें यह संदेश देता है कि साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र प्रेम के बल पर कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। आइए इस अवसर पर हम उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करें जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

श्रोताओं, कारगिल युद्ध से जुड़ी कुछ और बातें हम आपको बता दें। श्रोताओं, कारगिल युद्ध 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था, जहां ऑक्सीजन कम और मौसम बेहद प्रतिकूल था। भारतीय सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन के कब्जे वाले ठिकानों को वापस लिया। कारगिल क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया, जबकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से महत्वपूर्ण सहयोग दिया। टाइगर हिल पर पुनः तिरंगा फहराना युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस विजय ने युद्ध की दिशा बदल दी थी। इस युद्ध में 527 वीरों का सर्वोच्च बलिदान रहा। कारगिल युद्ध में भारत के 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। आज पूरा देश उनके साहस और बलिदान को नमन करता है। इस युद्ध ने जो सबसे बड़ी सीख दी वो ये थी कि भारत को खुफिया तंत्र, सीमा निगरानी, उच्च पर्वतीय युद्ध क्षमता और सैन्य आधुनिकीकरण को और मजबूत करने की प्रेरणा इस युद्ध से मिली।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: पीएम जय।

0: अब गरीबों की जाय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

सुनता हूँ कारगिल की चोटियाँ हमारे वीर जवानों के पराक्रम की गाथा सुनाती हैं। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और बटाली के पहाड़ आज भी उन रणबांकुरों के साहस की साक्षी है जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन सभी वीर शहीदों को हमारा नमन। और इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह से हमें दीजिए विदा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो इसी कामना के साथ।

0: आज सुबह।
1: सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 7:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव, भाग एक। डॉक्टर देवेंद्र सिंह से सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। उत्तम स्वास्थ्य और समाज समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना, रोगों की रोकथाम और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: सेहत की बात डॉक्टर के साथ कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज का हमारा विषय है हमारा आहार और उस पर सोशल मीडिया का प्रभाव। श्रोताओं, हमारा आहार हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के समय जब हर हाथ में मोबाइल है और हर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर से जुड़ा हुआ है, तो हर क्षण ऐसी सूचनाओं की भरमार है हमारे पास कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन सी कंपनी की चीज खाएं, किस ढंग से अपने आहार को व्यवस्थित करें। तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर अपने आप में एक अलग शरीर है और किसी और के साथ उसका कोई साम्य होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सूचनाएं तो सभी के लिए एक जैसी हैं और सारे लोग परेशान हैं। आज इसी बारे में बातचीत करते हैं और डॉक्टर देवेंद्र सिंह से सबसे पहले यही पूछते हैं कि इतनी सारी सूचनाएं खाने के बारे में हमको लगातार मिल रही है, हर व्यक्ति कम से कम 200 से 300 रील्स रोज देखता है खाने के बारे में, तो उसमें से क्या समझे वो, कैसे वो अपने खाने की दिशा निर्धारित करे।
4: जी सुप्रिया जी, आज इसी के विषय में बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दूं, एक जूता सबके पैर में फिट नहीं हो सकता।
3: सही बात है।
4: तो जब एक जूता सबके पैर में फिट नहीं हो सकता तो एक ही प्रकार की डाइट सबके लिए फिट कैसे हो सकती है।
3: सही।
4: तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। अब देखिए, जानने वाली बात यह है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है हर क्षेत्र में,
3: जी,
4: शिक्षा में, राजनीति में, आहार में, व्यवहार में, परिवार में, बच्चों को पहले पैदा करने से लेकर बच्चों को कैसे बड़ा करना है, हर चीज में सोशल मीडिया अपनी पैठ बना रहा है और लोग

0: इसको आंख बंद करके विश्वास भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही विषम परिस्थिति है। बहुत ही सीधे साधे अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि आपको क्या खाना चाहिए, तो अगर आप एक ठीक ठाक घर से बिलोंग करते हैं तो आपके दादा दादी नाना नानी जो खाते आए हैं वही आपके लिए बेस्ट आहार था, उसी को आपको फॉलो करना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: लेकिन अब स्थिति वो नहीं है, सोशल मीडिया सब तरफ है, मोबाइल उठाते ही आपको उधर से फिलर्स आ जाते हैं, आप ये देख लो वो देख लो, तो और आपने जो पहले कभी कुछ देखा होता था उससे संबंधित जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको वो फीड करना शुरू कर देते हैं। अब आप एक तरह से विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। अब इसमें एक तरह के ट्रेंड सेट करने की एक कोशिश होती है कि आपको क्या खाना चाहिए, और रोज अनेक तरह के आपको पकवान खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें कोई अपने पकवानों की जो खाना बनाने की जो पाक कला है उसको प्रमोट कर रहा है, तो कोई किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, कोई आपकी जीवन शैली को ऐसे ढालना चाहता है कि आप इस तरह के बन जाओ। कई बार बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं जो कि आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते, वो दिखा दिखा के आपको ललचाता है कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें अलग अलग तरह से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। अब आपको अपने आप को कैसे नेविगेट करना है, कैसे इसके बीच से अपनी नौखा को पार लगाना है, ये आपने देखना है।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, और आप उधर रोग विशेषज्ञ हैं, पिछले कई दशकों से आप इस अंचल में लोगों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो इन सभी को देखते हुए आपको क्या लगता है कि एक अच्छा आहार उसकी क्या खासियत होनी चाहिए और हमारे जीवन में उसको किस ढंग से हम सही कर सकें?
0: देखिए, सबसे अच्छा आहार होता है एक बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, फैट भी हैं, तीनों ही कंपोनेंट हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। अब कुछ डाइट ऐसा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, उसको बहुत ज्यादा बुरा बताते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट भी उतनी ही जरूरी है जितनी प्रोटीन की जरूरत है, फैट भी उतना ही जरूरी है जितने हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की जरूरत है। हाँ, प्रोपोर्शन उनका सही होना चाहिए, पर अब ये मान के चलिए 40-30-30 अगर हम रखें तो इस तरीके से ठीक रहता है।
1: 40 कार्बोहाइड्रेट, 30 प्रोटीन, 30 फैट,
0: ये एक सामान्य हेल्दी व्यक्ति के लिए ऐसा ही ठीक रहता है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज है, शुगर आपकी बहुत बढ़ रही है, आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़े मॉडिफाई करने पड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है। अगर आपको फैट बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है, कोई ऐसी बीमारी है जो फैट से थोड़ा बिगड़ सकती है, तो शॉर्ट पीरियड कुछ समय के लिए आपको फैट का रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है
1: जी।
0: लेकिन एक स्वस्थ युवा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको बैलेंस डाइट खानी है। और इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिसमें कि आयरन भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, हमें और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे होने चाहिए। हरी सब्जियों में होती हैं,
1: फलों में होते हैं जी, विटामिन्स,
0: जो ग्रीन वेजिटेबल जितने हैं, जो ग्रीन फ्रूट्स हैं, जो कलरफुल फ्रूट्स हैं उनमें होते हैं, उनका भी सेवन हमें करना है। लेकिन कुल मिला के हमें एक बैलेंस डाइट खानी जिसमें सब कुछ होना चाहिए। एक्सक्लूसिव डाइट बिल्कुल नहीं लेनी कि हमने कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया, हम कीटो डाइट पे चले गए, इससे बीमारियां होती हैं।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब, और जैसा आपने बताया कि बहुत छुपी हुई बातें इस सोशल मीडिया पोस्ट में होती हैं, हर कुछ आपके भले के लिए नहीं प्रसारित किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ये मान के चलते कि जो भी दे रहा सब हमारा भला सोच के दे रहा है, और उसके पीछे किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट रहता है, किसी अपने विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सारी चीजें होती हैं, वो समझना बड़ा मुश्किल रहता है आम आदमी के लिए। तो ये जो टारगेट फूड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इसको कैसे समझें और इससे बचें?
0: देखिए, ये जो आमतौर पे जो दर्शक होते हैं, जो मोबाइल यूजर्स होते हैं या जो सोशल मीडिया में रहते हैं, उनको मासूम नहीं बनना चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा बिलीविंग नहीं होना चाहिए कि हर चीज को ऐसे ही वो विश्वास कर लें जैसा वो बताया जा रहा है
1: जी।
0: कई सारे लोग अपने प्रोटीन प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि इससे बीमारियां पूरी दूर तरह से दूर हो जाएंगी, आपकी ऐसी मसल वाली बॉडी बन जाएगी, आपके सिक्स पैक्स बन जाएंगे, ये सब गलत बातें हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपका जो शरीर है वो डिपेंड करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि आपके जीन्स क्या है,
1: सच
0: आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपकी फैमिली, आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, इससे बेस होके आपकी एक आपका शरीर बनता है। और हर जेनेटिक प्रोफाइल के लिए एक तरह की पर्टिकुलर फिजिक होती है, और आपको ऐसी फोटो दिखाते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा मसल वाला एक बहुत योद्धा टाइप का दिखने वाला होगा, तो इस तरह की ये अचीवेबल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, सच्चाई नहीं है, इसके अंदर झूठ बहुत है। और ऐसी बॉडी का लालच दिखाकर आपको अपने प्रोडक्ट्स को वो लोग प्रमोट करते हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं जिसके अंदर अमूमन हमेशा कैफीन हुआ होता है, जो कि एक नशे वाली चीज है
1: जी।
0: बहुत कम मात्रा में चाय कॉफी में अगर आप लेते हैं तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन होती है, जो कि गलत है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, इनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इनका सेवन बिल्कुल सरासर गलत है। तो कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं है जो आपके अंदर एनर्जी भर देती है, बल्कि वो आपके मूड को एलिवेट करके आपको एनर्जेटिक फील कराती है, जो कि एक झूठी फीलिंग है। यू डोंट गेट एनर्जी, आपको एनर्जी नहीं मिलती, आपको एनर्जी की फीलिंग सिर्फ आती है, वो भी एक नशे की वजह से।
1: सच,
0: इसलिए इस तरह की चीजों से आपको बचना है। और जो जितने भी अल्ट्रा

0: प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अब देखिए सीजनल सामान हमें हमेशा खाना चाहिए, सीजनल फल खाएं, सीजनल वेजिटेबल लें। अगर हम गर्मियों में फूल गोभी खाने की कोशिश करते हैं, जाहिर है वो प्रिजर्व होगी,
1: बिल्कुल
0: फ्रोजन होगी। और भी कई चीजें हैं जो प्रिजर्वेटिव यूज करके पड़ी रहती हैं। अब ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड जितनी भी चीजें हैं, इनके अंदर जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह डाले जाते हैं वो पूरी तरह से सेफ नहीं होते। सेफ नहीं होने का मतलब है कि वो बीमारियां पैदा करते हैं। अब बीमारियां कौन सी पैदा करते हैं? एक तो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को खराब करते हैं, किस गति से आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन एब्जॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, और लॉन्ग टर्म में ऐसा पाया गया है कुछ जानवरों के परीक्षणों में कि वो कैंसर भी पैदा करते हैं। तो हमेशा फ्रेश ही खाएं। जो प्रोसेस्ड प्रिजर्व्ड पुराने फूड है ये सही नहीं है, लेकिन हमारे जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया वाले इन्हीं को प्रमोट भी बहुत ज्यादा करते हैं।
1: तो
0: यही आपको देख रहे हैं। आप ये मान के चलिए, एक सामान्य में बताऊं कि आपको हमेशा ताजा फल, ताजा सब्जी और ताजा अनाज का ही सेवन करना चाहिए, ये सबसे अच्छा है आपके।
1: डॉक्टर साहब बहुत सही बात आपने कही, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है जो अलग अलग शहरों में अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए रहती है, और उसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं, ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन कम ऑप्शंस रहते हैं कि वो खुद अपना खाना बना के खा सके। कई सारे बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या रहती है कि वो अपने आहार का चयन कैसे करें, और वो ही ये ट्रांस फैट्स से जितने भी माइक्रो प्रोसेस्ड और ये इस तरह के जो पैकेज्ड फूड है उनका सबसे बड़ा कंज्यूमर ग्रुप आजकल हमारी युवा पीढ़ी हो गई है। और उसमें लिखा रहता है बड़े बड़े लेबल में, सबसे बढ़िया हेल्दी फूड है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, और वो लिखा हुआ जो सूचना है उसको हम सब सही मानते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं।
0: ये जो हमारी युवा पीढ़ी है इनके लिए दो चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इनमें ज्यादातर जो युवा है, हमारे बच्चे हैं, वो जो काम करते हैं बैठे बैठे ही काम करते हैं, कई घंटों तक उनको अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना पड़ता है, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती
1: जी।
0: तो एक तो ये बहुत बड़ी उनके स्वास्थ्य के लिए कमी हो गई, चैलेंज हो गया कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई। अब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अब इसके बाद वो खाना खाएंगे, वो भी हाई कैलोरी फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को और भी खराब करेगा। तो आपकी एक्टिविटी में कमी होने की वजह से आपने अपने हेल्थ को रिस्क में डाला, मोटापा बढ़ा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुई, ऊपर से आपने खाना भी ऐसा खाया जो हाई कैलोरी, क्या कैलोरी डेंस कह लें हम, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, वो प्रोसेस्ड फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, ट्रांस फैट भरा हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें टेस्ट बढ़ाने के लिए डाली होती हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होकर बार बार इसे खाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें एक ऐसा कुल मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम पैदा करती हैं कि बच्चे फिर आगे चल के मोटापे से ग्रसित होके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि एक कॉम्बिनेशन है मोटापे का, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज का, तो ये एक पैदा करती है। और यही वजह है आज की तारीख में, और शायद हमारा जो इंडियन जेनेटिक प्रोफाइल भी है वो भी इसके लिए अनुकूल नहीं है, इस तरह की दिनचर्या के लिए, इस तरह के खान पान के लिए, जिसकी वजह से ही आज हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहला रहे हैं। तो यहाँ को बहुत अर्जेंट हमें इसको सोचने की जरूरत है इसके बारे में, और इसमें कैसे अपनी जीवन शैली को हमने एडजस्ट करना है, हमारे बच्चों को किस तरह से अपना खान पान एडजस्ट करना है। फ्रेश खाएं, खुद बना के खाएं, चाहे थोड़ा ही खाएं, लेकिन प्रिजर्वेटिव फूड को लोग ना खाएं तो बेहतर।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब, और ये जो बातचीत है इसको हम अगले एपिसोड में भी जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी और हैं इस संदर्भ में जानकारी हम श्रोताओं को देना चाहेंगे। तो अगले अंक में डाइट, हमारा आहार और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पर आगे की बातचीत रहेगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ स्वास्थ्य जागरूकता, निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, समय पर जांच के साथ रोगों की शीघ्र पहचान और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। गुरदीप इंदरजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुरदीप इंदरजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। विषय था सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव। डॉक्टर देवेंद्र सिंह से सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। प्रायोजक थे जीआई फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म केसरी का गीत अभी आपने सुना, और लीजिए सुनिए सदाबहार नगमे में ये अगला गीत।

0: लक्ष्य फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, शंकर महादेवन और सोनू निगम हरिहरन की आवाज़ें, जावेद अख्तर की बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बड़ी है।
3: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आपने सुना, एआर रहमान की आवाज़, संगीत एआर रहमान का और गीत की बोल लिखी जावेद अख्तर ने। और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी

0: सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांव

0: को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
2: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सीजेपी ने

अधिकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी सीजीपी ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता,

0: बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड। कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है करगिल युद्ध 12 से 18 हजार फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honor bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bagged silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIR should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
4: The Kokro Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
5: So, hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw karein, peacefully apne ghar wapas jaye.
2: Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his best to meet the expectations from him.
6: थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर

जम्मो श्रोता संगवारी मन झोका हमार जय जोहार अउ राम राम। कार्यक्रम माटी के स्वर मा आप मन के स्वागत है अउ आवा कार्यक्रम ला करी शुरू। पत्र पढ़थन अउ ए पत्र ला भेजैया हमार श्रोता संगवारी मन हवे। ग्राम भरी टोला डोंडी बालोद ले नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू अउ मुरली गौतम। ग्राम बगबुड़वा पथरिया ले हावे नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका अउ उत्कर्ष नेताम। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले हावे द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। बावली मर्रा कोना ले हावे उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल कौशिक, हरीश कुमार कौशिक, शिवम कुमार कौशिक। अउ भाटापारा ले हावे बच कमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यदू, लेखराम यदू, राधेश्याम टेलर, जितेन साहू। और मारवाड़ी कुआं भाटापारा ले सिया राम, अश्विनी पांडे, सोना डेले सुब्रत चौधरी, बीबी अनीसा। रायपुर ले नीलू में। हथनीपारा भाटापारा ले हावे दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। हटरी चौक बिलाई गढ़ ले हावे खिकराम देवांगन, रजनी प्रियंका अउ रेणु देवांगन। रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अउ महमदपुर भक्तन बाजार अकलतरा ले हावे रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। हमारे जम्मो श्रोता संगवारी मन के पसंद के ए गीत ला आवाज सुन ली। ए गीत के गवैया कलाकार हावे संतोष शुक्ला अउ साथी मन।

संतोष शुक्ला की गाए सुघर गीत के पाछू आवा एक ठन अऊ गीत ला सुन ली। अऊ ए गीत बर हमर करा पत्र भेजैया हमर श्रोता संगवारी मन हावे जितेन दास मानिकपुरी मिलऊ दास जय दास देवेश दास धनवंतिन बाई मोतीन बाई मानिकपुरी ए मन हावे गणेश धाम मरसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद ले अऊ पेंड्रा धनगवा बरपारा छत्तीसगढ़ ले कैलाश काशीपुरी चंदरबाई संजना सुरेन श्याम कंवर काशीपुरी प्यारे लाल सुनवानी और लक्षनपुर ले हमें रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और बेलगहना शक्ति बेहरा ले हमें श्याम शंकर मिस्त्री विजय पायलट रागिनी गीता देवी कैलाश चंद्रवती कुसुम काशीपुरी और राधा पड़वार कतियापारा जूना बिलासपुर ले हमें सुशील देवांगन अखिलेश देवांगन लोकेश आशीष रवि शनि रेयांश कान्हा आदित्य देवांगन और बमहर चाटीडी ले हमें गंगा देवी देवांगन पूनम देवांगन धनेश्वरी महेश्वरी कुमारी मिल्की बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन और श्रृंगी ऋषि महानदी से हवा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव ले हमें मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन और चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन ता आवा हमारे जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद के

अउ महादेव हिरवानी के गाए ए गीत के पाछू एक ठन अउ गीत ल आवा सुनी है। ये गीत बर हमर करा पत्र भेजैया हमर श्रोता संगवारी मन हावे। ग्राम धुरा बांधा भाटापारा ले प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार अउ युवराज साहू धरसी वाले हावे। छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुण यादव, अनुराधा, अल्पना यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले हावे। छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव दतरंगी भाटापारा ले हावे। नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा पोटिया कला दुर्ग ले हावे। संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू और शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान, सिकंदर खान, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज, अलफैज, हजीरुन्निशा, सादिया, बिलहा ले शेख नासिर, मैजबीन बानो। ग्राम बुड़गहन यहाँ ले हावे राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। ग्राम रोहासी ले हावे डगेसर राम साहू, नूतन साहू, घनश्याम साहू और गौरव साहू और लुतरा खमरिया ले नकुल श्याम।

मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज ए मन ए गीत ला सुनना चाहत हैं। ए गीत लगाए हवे बरसाती कौशिक और ओकर साथी मन, आवा सुनू ये सुखा गीत ला।

ए गीत ला ए गीत पर हमार करा पत्र भेजैया हमार श्रोता संगवारी मन हावे। तेलीपारा बिलासपुर ले रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल शिवास, अनीता शिवास, हरदेवलाल पारावाड़ सिमगा ले हावे, रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव और भाटापारा ले हावे दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत और देवरी भाटापारा ले हमें गन्नूला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मायाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फनेश्वर रजक, मुकेश रजक, काव्या और तानिया रजक और पलारी जिला बलौदा बाजार ले हमें नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, तनुजा और ईशान देवांगन ता आवा हमारी जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद के ये गीत ला सुनी। ये गीत ला गावत हमें ममता चंद्राकर और कुलेश्वर वस्त्रकार।

चंद्राकर ओकुलेश्वर वस्त्रकार की गाय ए गीत के पाछू आवाज सुन ली कार्यक्रम के अंतिम गीत ला ओ ए गीत पर पत्र भजैया हमार श्रोता संगवारी मन हावे नैला बोरसरा जांजगीर ले हेमदे तिवारी दुर्गा प्रसाद अमन कुमार मीनाक्षी उमा भाई अंजुलता ठगिया देवी विष्णु प्रसाद मोगरा देवी मिश्रा औ प्यारे लाल मिश्रा द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा एमन हावे भाटापारा दतरंगी ले बंगला मटिया पालोद ले हमें शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रैंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष और निरुवाड भाटापारा ले हमें प्रेमनाथ साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत साहू राघवेंद्र साहू मोहन पारा अकलतरा ले अभिनव साहू अभिषेक साहू उमा देवी और ग्राम पंचायत बठेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी चटौदर सारा गाँव ले सुजान वर्मा सुहद्रा वर्मा आयुषी और कृत वर्मा और ग्राम रसड़ा कलतरा ले हमें मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार साहू कीर्ति कुमार संध्या साहू डिकेश वासु डॉली और पूर्वेश साहू दावा हमारे जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद के एक गीत ला सुन ली एक गीत लगा है ध्रुआ राम मरकाम और दुखिया बाई।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: संग माटी के स्वर कार्यक्रम ले हमला देवा विदा जय जोहार। कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। प्रायोजक विधि एवं न्याय मंत्रालय।
2: Bring you a talk on environmental jurisprudence by Anna Apriya, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
3: जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी जूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं। एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पेक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, विच आई ऑल्सो अग्री विथ, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल

0: right? It is also a fundamental concern of the Indian government as well as the Indian constitution. And few more provisions, which usually chhoot jata hai logon ke notice se, kyunki 48A and 51AG are the most important ones. But if you look at the provisions relating to local government, which is municipal corporations, usme bhi explicitly functions mein unke mentioned hota hai. If you look at part 9A of the constitution, which talks about municipal corporation, local government generally, ki you have to make a draft development plan for ecological conservation and environmental protection. So jo district or metropolitan planning committees hain, unke respect mein specifically environment protection ka mention hai. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आया हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act, जिसमें सारा environment की सारी चीज़ें cover होती हैं, but that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं, जो Water और Air Act के under काम करते हैं, and EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के under से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, जो wetlands की बात करता है. तो also we know, तो after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner, कि कितने तरीके के rights हैं. Environment law कहाँ कहाँ से आ सकता है. So ये constitutional rights और fundamental rights, क्योंकि like I mentioned in the very beginning, उसमें mentioned नहीं था constitution में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे develop हुआ through amendments, but उसमें Supreme Court का particularly काफ़ी important role रहा है. तो starting with one of the cases, तो it is something which people say in environmental law circles, कि if we talk about the journey of environment law, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्ती चंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन, बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्सन्स हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है, बट बाय मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन व्हेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट

0: एबल टू हायर अ लॉयर, और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई. थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने. नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया. चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए. बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज. अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज. अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो. तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ. आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट. वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मैंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस. तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, एम सी मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरी से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरी से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है विच इज पोल्यूटिंग द गंगा रिवर. इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज. सो दिस नाउ राइट हैज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टीएन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

a private cannot be privately owned by someone. It is held in trust by the state for the public of the country. तो यहाँ पे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया कोर्ट ने, जहाँ पे स्टेट इज हैज अ ड्यूटी ऑफ केयर कि उनको एनवायरमेंटल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने हैं फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एंड ऑल दीज थ्री डेकेड्स ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड एडवांस्ड इंटरप्रिटेशन विच द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव डन इवेंचुअली लेड टू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ specialized tribunal, judicial tribunal, which is the National Green Tribunal. It was established as a part of National Green Tribunal Act in 2010. And इसके पहले इसके पीछे भी काफ़ी सारे जजमेंट्स में आप देखेंगे कि बात हुई है कि there needs to be a separate tribunal जहाँ पे सिर्फ environmental के matters सुने जाएं. Law Commission reports भी हैं जिसमें specifically NGT, not exactly in these terms, but ऐसा बोला गया है कि there is a need, there is a big need because environmental litigation in India is huge. And the Supreme Court and the High Courts keep getting burdened, so there is a need for a specialized tribunal. All I could say is, while talking about jurisprudence, is

एनजीटी, नॉट एग्जैक्टली इन दीज टर्म्स, बट ऐसा बोला गया है कि देर इज अ नीड, देर इज अ बिग नीड, बिकॉज एनवायरमेंटल लिटिगेशन इन इंडिया इज ह्यूज एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कीप गेटिंग बर्डन, सो देर इज अ नीड फॉर अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल. All I could say is, while talking about jurisprudence, is the judiciary has given a very well lit path. Now it is up to the institutions, the governments, and the civil society to walk on that path and eventually lead to a cleaner and a better environment for all.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग अभी आप सुन रहे थे। प्रायोजक विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 9:15 हुए हैं और अब हम सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम अजहर। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। मनोज यादव ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत, जिसे शुरू में ढाला है प्रीतम ने। आवाज अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कहना ले, जब तक

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

सुधीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासू वास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर फड़के का मराठी फिल्मों में पदार्पण हुआ।

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्ये गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुढ़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची गोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

0: मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि गदी माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।
1: मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व तव मानसी आत्मगर्व विषमय तव आयु सर्व बोध शब्द कठिन मधुर तुझसी लागला लंके वर काल कठिन आज पातला भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन भीषण कृत सत्य कथन अप्रिय परिपथ्य वचन।

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 होने वाले हैं और अब रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। कारगिल विजय दिवस पर आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार उन्हें सौंपा गया है। श्री जोशी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। कारगिल दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफल और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कोरबा जिले के कटघोरा से लगे सलोरा छुरी गांव में खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीणों की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 25 से 30 ग्रामीण छुरी बकरा बाजार सबस्टेशन के पीछे स्थित खेत में रोपा का काम कर रहे थे। इसी दौरान मौसम बदल गया और खेत की मेड़ पर सीधे आकाशीय बिजली आकर गिरी। इसकी चपेट में 3 ग्रामीण आ गए। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही 6 महिलाएं झुलस गई हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। बताया जा रहा है कि शाम को गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश के दौरान ये घटना हुई। प्रदेश में पहली बार महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन 30 जुलाई को किया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य मातृशक्ति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। पौधारोपण कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य इच्छुक महिलाओं को निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पौधे उपलब्ध करा रही हैं, ताकि प्रत्येक महिला 30 जुलाई को अपने घर, आंगनबाड़ी अथवा उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण कर सके। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी ओडिशा के तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की पुलिस ने फर्जी नक्सली बनकर बैनर पोस्टर लगाने के आरोप में छत्तीसगढ़ के कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के जनपद सदस्य शिवा मिस्त्री और अन्य को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए रायपुर जिले में 52 केंद्र बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। कारगिल विजय दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से

0: मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 6:10 पर आप सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 10 बजे हैं। और अब लीजिए सुनिए नन्हे बच्चों का कार्यक्रम, आओ बच्चों।

0: हिंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को आपकी अदिति दीदी का ढेर सारा प्यार। तो काफी दिनों बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है ना, तो बताइए बच्चों कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई, ट्यूशन और स्कूल सब बढ़िया चल रहे हैं ना? अरे हाँ, पिछले दिनों जो बारिश हुई है हमारे शहर में, उसमें तो हम सभी काफी परेशान हुए हैं ना। जगह जगह पानी का भराव, कई लोगों के तो घरों के अंदर भी पानी चला गया। बच्चों जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, समुद्र में तेज हवाएं चल रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और एक भयंकर तूफान तट की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में कोई ऐसे प्रकृति के सुरक्षा प्रहरी हैं जो तूफान और तेज लहरों को रोकने की कोशिश करते हैं और खारे पानी में भी बड़े आराम से उगते हैं। बच्चों ऐसे खास पेड़ों को हम मैंग्रोव कहते हैं। बच्चों इनकी जड़ें जमीन के ऊपर और नीचे चारों ओर फैली रहती हैं। ये जड़ें मिट्टी को कस कर पकड़ लेती हैं और समुद्र की तेज लहरों की ताकत को कम कर देती हैं। इसलिए इन्हें समुद्र का सुरक्षा कवच या प्रकृति का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। और हाँ बच्चों, मैंग्रोव सिर्फ पेड़ ही नहीं है बल्कि मछलियों, केकड़ों, झींगों और कई पक्षियों का प्यारा घर भी है। बच्चों मैंग्रोव सिर्फ तूफानों से ही हमें नहीं बचाते बल्कि मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। आइए बच्चों, हम सब मिलकर एक संकल्प लें, पेड़ों को बचाएंगे, मैंग्रोव बढ़ाएंगे और प्रकृति को सुरक्षित बनाएंगे। बच्चों बातें हम आपसे कभी और भी करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं चिल्ड्रंस वैली स्कूल राजकिशोर नगर के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चिल्ड्रंस वैली स्कूल राजकिशोर नगर के बच्चे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पर्यावरण पर एक स्पीच छोटी सी जिज्ञासा बंजारे से।
1: नमस्कार, सुप्रभात, मेरा नाम जिज्ञासा बंजारे है। मेरी स्पीच का शीर्षक है पर्यावरण। सम्माननीय श्रोतागण, आज विज्ञान और तकनीक के इस दौर में जहां हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं, वहीं जमीन पर एक बेहद गंभीर संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह संकट है हमारे पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन। पर्यावरण का सीधा अर्थ हमारे आसपास का वह वातावरण है जो हमें शुद्ध हवा, बहती नदियाँ, उपजाऊ मिट्टी और लहलहाते पेड़ पौधे देता है। लेकिन आज आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्लोबल वार्मिंग, बेमौसम बारिश, भीषण गर्मी, प्रदूषित हवा, ये सब इस बात का सबूत है कि पर्यावरण अब हमसे नाराज है। रेडियो के माध्यम से देश में कोने कोने में बैठे आप सभी साथियों से मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी धरती देकर जाना चाहते हैं जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और पीने के लिए साफ पानी भी पैसों से खरीदा जाए? निश्चित रूप से आप सभी का जवाब होगा नहीं। श्रोताओं, हमारी संस्कृति में प्रकृति को भगवान माना गया है, नदियों को माँ और पेड़ों को देवताओं का दर्जा दिया गया है। आइए अपनी इस महान संस्कृति को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखें बल्कि इसे अपने व्यवहार में उतारें। याद रखिएगा साथियों, प्रकृति के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इंसान के बिना प्रकृति हमेशा हरी भरी और आबाद रह सकती। चुनाव हमारा है कि हम विनाश की तरफ जाना चाहते हैं या विकास और हरियाली के खूबसूरत तालमेल की तरफ। तो फिर देर किस बात की है साथियों, बदलाव की शुरुआत

0: बड़ी नीतियों से नहीं बल्कि हमारे और आपके घरों से ही होगी। आकाशवाणी के मन से आज मैं आपसे कुछ छोटी ही सही लेकिन बेहद जरूरी संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ। जल का सम्मान करेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करेंगे, हरियाली से अपना नाता बढ़ाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे। हम अपनी धरती को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: तो बच्चों, कितनी अच्छी बातें हमें बताई ना जिज्ञासा ने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिज्ञासा की बताई हुई बातों पर अमल भी करेंगे। और अब इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ अश्मित सिंह को कविता पाठ के लिए।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्मित सिंह है। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सफलता से थोड़ी दूरी है, सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे, वक्त लगेगा और मुझे, पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आँखों में अब नींद कहाँ, आँखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगा और हासिल करूंगा, बढ़ूंगा और हासिल करूंगा, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूंगा हाँ आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी।
1: तो बच्चों, कितनी प्यारी कविता सुनाई ना अस्मित ने, जोरदार तालियां अस्मित के लिए। सच में अश्मित, बहुत प्यारी कविता सुनाई आपने। आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ गौरव कुमार को कविता पाठ के लिए।
3: नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा वह कल चल निकलेगा। धन्यवाद।
1: तो बच्चों, जोरदार तालियां गौरव कुमार के लिए। और आप लोग भी निरंतर कोशिश करते रहिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ नितिन कुर्रे को। नितिन कुर्रे हमें एक कहानी सुनाएंगे।
4: सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम जितिन कुर्रे और आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम अमलतास है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ चारों ही ओर हरियाली है, सांस लेने को ठंडी ताजी हवा, पीने को ताजा बहता पानी। यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन शहर के कुछ लोग आए, वो यहाँ की सुंदरता और समृद्धि देखकर उनका मन डोलने लगा। वह अपने लालच में आकर कई सारे कारखाने स्थापित किए, जिनसे निकलता हुआ गंदा पानी, गंदी हवा यहाँ के साफ पानी और साफ हवा को प्रदूषित करने लगा, यहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा। एक दिन चिंटू अपनी दादी से पूछता है कि हमारे घरों में अब चिड़िया आनी बंद क्यों हो गई है, हमारी नदियों का पानी इतना मैला क्यों हो गया है। तो उसकी दादी बोलती है कि ये सब इंसानों की ही गलती है, जो अपने लालच में आकर ये भूल चुके हैं कि उनके बनाए गए कारखानों से इतना प्रदूषण फैल रहा है कि धरती माँ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। चिंटू ये सब सुनकर बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वो अगले दिन स्कूल में जाकर सारे दोस्तों को मिलकर ये बोलेगा कि हम लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर गांव में रैली निकालने गए। उन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, सारे लोगों को ये बोला कि कम से कम पेड़ काटे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, और कारखानों के मालिकों को ये बोला कि आप अपने गंदे पानी और गंदे कचड़े को पहले एक प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू करें, ताकि वो साफ सुथरा हो और पर्यावरण में छोड़ने लायक बने। बच्चों के पर्यावरण के प्रति प्रेम को देखकर कारखानों के मालिकों ने अपनी गलतियां स्वीकार की और उसे सुधारने की कोशिश। लंबा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे अमलतास पहले जैसा सुंदर और सांस लेने लायक बना। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो हम और आप इतने अच्छे नहीं हैं कि ऐसा करेंगे। माना कि कुछ लोग हैं जो इस चीज में आवाज उठाते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। हमें मिलकर एकजुट होना पड़ेगा और ये चीज को बहुत ऊंचे लेवल पे जाना पड़ेगा। तो कौन कौन है मेरे साथ, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके अंदर वो चिंटू जिंदा है या नहीं। धन्यवाद।
1: तो बच्चों, जितिन की कहानी आपने सुनी और हम उम्मीद करते हैं कि जितिन की बताई हुई बातों पे आप अमल भी करेंगे। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुला रही हूँ सत्यव्रत मीरे को।
5: सुप्रभात दोस्तों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह कविता कुछ ऐसी है। यहाँ सब कुछ बिकता है, यहाँ सब कुछ बिकता है, रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में।

0: भर के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है पानी। कभी फूल की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। कभी फूल की तरह मत जीना, जिस दिन जियोगे उस दिन टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा बन जाओगे। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इस कविता का मोरल यह है कि मजबूत बनो, सजग रहो और खुद से लड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया सत्यव्रत।
0: धन्यवाद दोस्तों।
1: दोस्तों, अगली प्रस्तुति लेकर आए हैं आपके सामने हर्ष देवांगन। तो हर्ष, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, आपके प्रिय विषय कौन कौन से हैं हर्ष?
2: इंग्लिश, साइंस,
1: हाँ,
2: हिंदी।
1: अच्छा, आपकी हॉबी क्या क्या है हर्ष?
2: मेरी हॉबी है साइंस को अच्छे से जानना, पढ़ना, हिंदी भी अच्छे से पढ़ना, साइकिलिंग करना, खेलना कूदना, ये सब।
1: बहुत बढ़िया। आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
2: मैं आज आप लोग को पर्यावरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
1: हाँ, चलिए बताइए।
2: पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण का अर्थ जल, वायु और पेड़ पौधे तथा हमारे आसपास का वातावरण है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हमें जल और ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण पृथ्वी को सुंदर बनाता है। अगर पर्यावरण बचेगा तभी पृथ्वी बचेगी। स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन, यही हमारा नारा होना चाहिए।
1: सच में बच्चों, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन, कितनी सुंदर बातें बताई ना हर्ष ने।
2: धन्यवाद।
1: जोरदार तालियां एक बार हर्ष के।
2: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, आपके सामने आ रही हैं काजल मीरे एक छोटी सी कविता सुनाने।
3: नमस्कार, मेरा नाम काजल मीरे है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। देखो आगे तुम पीछे क्या रखा है, कि देखो आगे तुम पीछे क्या रखा है, पछताने के लिए खुद में और क्या बचा रखा है। क्यों डरते हो आगे बढ़ने से, कि क्यों डरते हो आगे बढ़ने से, क्या गिर जाने के डर से, या भयभीत हो तुम दुनिया से लड़ने में। तुम खुद में एक मिसाल हो, न डर के आगे बढ़ पाओगे, बस खुद पर रखो विश्वास, आगे बढ़ते जाओगे। धन्यवाद।
1: जोरदार तालियां काजल के लिए।
4: सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम अभ्युदय पाठक है, मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम चिल्ड्रन वैली स्कूल है। आज मैं आपको पर्यावरण पर एक छोटी सी स्पीच सुनाना चाहता हूँ। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण का अर्थ जल, वायु और पेड़ पौधे हैं तथा हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। इससे हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करने हमारा कर्तव्य है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण पृथ्वी को सुंदर बनाता है। धन्यवाद।
1: तो बच्चों, आप भी इस बारिश के मौसम में संकल्प कीजिए कि पौधे लगाएंगे और पौधों की रक्षा करेंगे, ताकि हमारे वातावरण को शुद्ध किया जा सके, हमें शुद्ध वायु मिल सके और हमारा वातावरण शुद्ध हो सके। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुला रही हूँ दीपक कुमार वर्मा को। दीपक कुमार वर्मा हमें एक देशभक्ति कविता सुनाएंगे।
5: सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है। आज मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीम तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे।

रहे, बल दल सजा रहे, बल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम धीरे चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर डटो वहीं, सूर्य से बढ़े चलो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, माइनस में भी तुम डटो, माइनस में भी तुम डटो, राष्ट्रहित बढ़े चलो, राष्ट्रहित बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर

0: चलो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वही, तुम निडर डटो वही, सूर्य से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बिजलिया कड़क उठे, बिजलिया कड़क उठे, बिजलिया तड़क उठे, बिजलिया तड़क उठे, माइनस में भी तुम डटो, माइनस में भी तुम डटो, राष्ट्रहित बढ़े चलो, राष्ट्रहित बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया दीपक, इसी तरह आप भी आगे बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामना है आपको। आप सभी को हमारी यही शुभकामना है। जोरदार तालियां दीपक के लिए।
2: मेरा नाम अयोध धदीवान है। मैं तीसरी का छात्र हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। हर पल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चीटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी, छोटे तन पर बड़े इरादे, नन्हे नन्हे पैर बराकर पर्वत पर चढ़ जाती चीटी, काम करे दिखलाती कहाँ कहीं अड़ जाती चीटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चीटी। धन्यवाद दोस्तों।
1: बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आपके सामने एक कविता लेकर आ रही है विद्या। तो विद्या आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
3: मैं 8वीं में पढ़ती हूँ।
1: और आप क्या बनना चाहते हो विद्या बड़े होकर?
3: मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्या तुमको। चलिए आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
3: नया सवेरा।
1: सुनाइए।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विद्या निषाद, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा, और आज आप सभी के सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उठो बढ़ो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार करता है, ये है खुला आसमान, ये जमाना इंतजार करता है, न रुको किसी के रोकने से, न झुको किसी के झुकाने से, तुम खुद अपनी राह बनाओ, न डरो जमाने से, तकनीक और सपनों की इस अनोखी राह पर तुम लिखो नई कहानी हर एक मुकाम पर, गिरना भी मंजूर है फिर उठ खड़े होने के लिए, हर एक चुनौती जरूरी है इतिहास बनाने के लिए, हाथों में हुनर और दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखो, तुम कल की उम्मीद हो, खुद पर भरोसा रखो, उठो बढ़ो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार करता है, ये नया भारत, ये पूरा जमाना तुम्हारा इंतजार करता है। धन्यवाद। उठो बढ़ो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार करता है, ये खुला आसमान, ये जमाना इंतजार करता है, न रुको किसी के रोकने से, न झुको किसी के झुकाने से, तुम खुद अपनी राह बनाओ, न डरो जमाने से, तकनीक और सपनों की इस अनोखी राह पर तुम लिखो नई कहानी हर एक मुकाम पर, गिरना भी मंजूर है फिर से उठ खड़े होने के लिए, हर एक चुनौती जरूरी है इतिहास बनाने के लिए, हाथों में हुनर और दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखो, तुम कल की उम्मीद हो, खुद पर भरोसा रखो, उठो बढ़ो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये नया भारत, ये पूरा जमाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू।
1: बहुत बढ़िया विद्या, जोरदार तालियां विद्या के लिए। बच्चों अब आपके सामने फिर से एक प्यारी सी कविता लेकर आ रही है लावण्या। लावण्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, लावण्या को कौन कौन से विषय पसंद है?
4: मेरे को हिंदी, साइंस और संस्कृत पसंद है।
1: अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो लावण्या?
4: मैं बड़ी होकर IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य की। चलिए आप कविता सुनाइए।
4: हरी भरी धरती माँ की शान, पेड़ों से महकते सारा जहाँ, नदियाँ बहती धीमी धीमी धार, आओ हम सब बचाएं अपना भविष्य। हरी भरी धरती माँ की शान, पेड़ों से महकते सारा जहाँ, नदियाँ बहती धीमी धीमी धार, आओ हम सब बचाएं अपने भविष्य को, कम करें प्लास्टिक की यूज, कम करें प्लास्टिक की यूज, आओ चलो हम सब कसम है खाएं आज, स्वच्छ और हरा भरा बनाएं अपना भविष्य।
1: बहुत प्यारी कविता सुनाई लावण्या ने, जोरदार ताली लावण्या के लिए। दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको जिज्ञासा बंजारे सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद पर कुछ जानकारी देंगी।
5: नमस्कार, मेरा नाम जिज्ञासा बंजारे है और मैं आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने प्रारंभ में नवाब राय और बाद में प्रेमचंद नाम से लेखन किया। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान कथाकार एवं

0: उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबों और समाज की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। उनकी मुख्य रचनाओं में गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन जैसे उपन्यास तथा ईदगाह, कफन, पुस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ शामिल है। धन्यवाद।
1: सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम अभ्युदय पाठक है। मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मुंबई में एक 8 साल का बच्चा था आरव। रोज वो स्कूल जाते समय वो रास्ते में पड़ी प्लास्टिक की बोतल उठाकर डस्टबिन में डालता था। एक दिन टीचर ने पूछा, आरव तुम्हें क्या मिलेगा इससे? आरव बोला, मैम मैं अगर एक बोतल उठाऊंगा और मेरे दोस्त भी एक बोतल उठाएंगे तो कल हमारी सड़क साफ होगी और हम साफ सड़क पर चलकर मेरी दादी को गिरने का डर नहीं लगेगा। आज आरव के स्कूल में 500 बच्चे एक बोतल एक दिन में अभियान चलाते हैं। सीख, बदलाव के लिए बड़े होने का इंतजार मत करो, छोटी उम्र छोटा काम बड़ा असर। धन्यवाद।
2: तो बच्चों, सुनी आपने ये कहानी? बहुत अच्छी कहानी सुनाई हमें अभ्युदय ने। और अभ्युदय के बाद अब आ रही है एली। एली, आप किस कक्षा में पढ़ती है?
3: मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ।
2: अच्छा, आप हम सबको क्या सुनाने वाली है?
3: मैं कविता सुनाने वाली हूँ।
2: सुनाइए।
3: खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, जो गलती आज की है उसे फिर मत मांग, किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख मत मांग। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ करने की ठान है, तू रुक मत, तुझे करना कुछ महान है। तू अपने घर वालों की आस है, उनकी उम्मीदों की सांस है, इनको यूं ही नहीं जाया करना है, तुझे अपनी सफलता के लिए लड़ना है। धन्यवाद।
2: बहुत प्यारी कविता सुनाई हमें एली ने। जोरदार तालियां एली के लिए। बच्चों, आइए सुनते हैं चिल्ड्रंस वैली स्कूल की शिक्षिका का ये छोटा सा संदेश।
4: सुप्रभात बच्चों, मैं चिल्ड्रन वैली स्कूल राजकिशोर नगर की शिक्षक बोल रही हूँ, संगीता राय। मेरा विद्यालय केवल ज्ञान का ही केंद्र नहीं बल्कि बच्चों को सपनों का पंख देने के लिए एक पवित्र तपोभूमि है। यहाँ के आदरणीय शिक्षकगण बच्चों को शिक्षा ही नहीं देते बल्कि उनके चरित्र का निर्माण भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा हूँ। धन्यवाद।
2: और बच्चों, अभी आप सुन रहे थे चिल्ड्रंस वैली स्कूल राजकिशोर नगर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। बच्चों, 26 जुलाई केवल एक तिथि नहीं है बल्कि ये भारत के साहस, शौर्य, त्याग और अदम्य राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। ये वो दिन है जब पूरा देश कारगिल युद्ध के उन अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। हम उन परिवारों के प्रति भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने बेटों, भाइयों, पतियों और पिताओं को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। और बच्चों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बच्चों, आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी अदिति दीदी को अनुमति दें। जय हिंद।
1: नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 10:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नए तराने।

और तेजस फिल्म के इस गीत के साथ ही नए तराने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:55 होने वाले हैं और अब आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
5: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा

0: चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई

जुलाई से देशभर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है, महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है, आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने
गोल्ड मेडल जीते।

और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ

एक लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे,

जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़

चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से
युवाओं

के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंगफ्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपके

0: बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:31 हुए हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
4: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। हमर जिंदगी मा कुछ तारीख मन ऐसन होते जेन ला सुरता राखे खातिर कैलेंडर देखे के जरूरत नहीं पड़े। आज 26 जुलाई ऐसने एक ठन तारीख है, आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमन ला गर्व ले भर देते, ये दिन हमन ला अपन वीर जवान मन के अद्भुत साहस के सुरता देवा थे। कारगिल के ऊंचा ऊंचा चोटी, कठिन मौसम, दुश्मन के चुनौती, हर परिस्थिति हमर सैनिक मन के आगू में रहीस। फिर उनकर हौसला हर चुनौती ले बड़े रहीस। वो मन माँ भारती के रक्षा बर अपन सर्वस्व अर्पित कर देन। आज कारगिल विजय दिवस मा मैं जम्मो वीर शहीद और वीर सैनिक मन ला श्रद्धापूर्वक नमन करत हूँ। संगवारी हो, आज के भारत अपन वीर मन ला खाली यादे नहीं करे, भलुक नवा पीढ़ी तक उनकर गाथा घलो अमरा थे। यही भावना ले ये बछर एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाले गए है। 14 जुलाई के दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल ले शुरू हुए ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के कारगिल वार मेमोरियल तक पहुंची। एकर संदेशा है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। ये यात्रा हमन ला सुरता करा थे कि राष्ट्र खातिर दे गे बलिदान कभू भुलाए नहीं जा सके। संगवारी हो, आज भारत अपन सैनिक मन के साहस के संगे संग अपन तकनीकी क्षमता ला घलो सरलग मजबूत करत है। कुछ ही दिन पाछू भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी सम्मिलित करे गए। ये आधुनिक जंगी जहाज भारते में डिजाइन करे गए है, भारते में बने हैं। इमें 75% ले ज्यादा स्वदेशी सामग्री के उपयोग हुए है। ये आत्मनिर्भर भारत के बाढ़त शक्ति के चिन्हारी है। यही महीना DRDO पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के घलो सफल परीक्षण करे है। ये सफलता पाछू हमार वैज्ञानिक और इंजीनियर मन के सामूहिक परिश्रम है। दुवे 3 दिन पाछू DRDO कुशा मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे है। संगवारी हो, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देश मन संग राजनीतिक सहयोग, भारत सरलग नवा ऊंचाई कोती बढ़त है। यही महीना के शुरू में मैं इंडोनेशिया में रहे हूं, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खातिर एक बड़का समझौता हुए है। दुनिया के भरोसा भारत के रक्षा उपकरण और तकनीक में बढ़त है। आवाओ ये कारगिल विजय दिवस में हम अपन अमर शहीद मन के नमन करन और एक सुरक्षित सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अपन संकल्प और मजबूत करन। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मन की बात के पिछला कड़ी में मैं आप मन ले कैच द रैन अभियान के चर्चा करे रहे हूं। मैं आग्रह करे रहे हूं कि बरसात के हर बूंद ला सहेजे के ये अभियान ला जन आंदोलन बनावें। कैच द रैन के संदेशा बहुत ही सोझ है, जिहां पानी गिरे, जब पानी गिरे, पानी ला उहे सहेजाओ। यही पाए के 4 जुलाई ले देश भर मा एक ठन विशेष अभियान घलो चलाए जात है। एकर अंतर्गत बरसात के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जुन्ना जल सोता मन के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण ला

नवा गति दे जात हे। मोला बहुते खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायत हो या सामाजिक संस्था, हर ठिया मा लोगन मन बढ़ चढ़ के भागीदारी करे हैं। कहूं जुन्ना तरिया मन ले गाद निकाले जात हे, कहूं कुआं और बावली मन ला फेर जिंदगी दे जात हे। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज के माध्यम बनत हैं। संगवारी हो, मध्य प्रदेश के सीधी जिला मा करीबन 1500 तरिया बनाए गए हे। नरसिंहपुर मा अमृत सरोवर मन ला संवारे गए हे। महाराष्ट्र के नासिक मा बड़का मात्रा मा पानी सहेजे के क्षमता विकसित होए हे। आंध्र प्रदेश के नंदयाल मा सब्बो ग्राम पंचायत मन ये अभियान ले जुड़े हैं और जुन्ना तरिया मन ला फेर उपयोगी बनाए गए हे। हमर शहर घलो पाछू नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ये अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखत है। आवाओ हम घलो अपन तीर तखार के कोनो एक तरिया, कुआं या बावली के जिम्मेदारी लेवन, पानी के हर बूंद बचावन। आज बचाए गए हर बूंद अवैया पीढ़ी के भविष्य के सबले बड़का पूंजी है। मोर देश के मायारुक रवैया हो, कुछ दिन पाछू ग्लासगो मा कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए है। हर देशवासी भारतीय दल ला सरलग अपन शुभकामना देवत है। उनखर कामना है कि सब्बो खिलाड़ी और एथलीट मन सुंदर प्रदर्शन करें और लोगन मन के हृदय घलो जीतें। संगवारी हो, हमर युवा मन हालेज के दिन मन मा खेल कूद मा कईयों शानदार उपलब्धि प्राप्त करे हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन मा जापान ओपन के खिताब जितैया पहली भारतीय बन गए हैं। उनखर ये उपलब्धि मा पूरा देश लग गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम हा घलो लंदन मा लॉर्ड्स स्टेडियम मा अपन पहली टेस्ट मैच जीते है। ये एक ऐतिहासिक जीत है। हमर टीम हा 270 रन के बड़का अंतर ले ये मुकाबला जीते है। फिर बात खाली अतकेच नहीं है, लॉर्ड्स के लंबा इतिहास मा ये महिला टीम के पहली टेस्ट मैच रहिस। 1983 मा इही मैदान मा भारत हा अपन पहली क्रिकेट विश्व कप जीते रहिस। अब हमार नारी शक्ति हा यहाँ देश के नाव उज्जर करे है। संगवारी हो, कुछ नानुक प्रयास ऐसन घलो होते जेन बहुत मायना रखते। मुला केरलम मा एर्णाकुलम के दक्षिण चित्तूर मा खेलकूद के ऐसने एक ठन प्रयास के बारे में पता चले है। वहाँ के एक स्कूल मा संस्कृत क्लब है। यहाँ के शिक्षक अभिलाष जी बड़ अनूठा रकम ले संस्कृत ला लोकप्रिय बनावत हैं। ये प्रोजेक्ट ला अक्षर कंदूक नाव दिए गए है। एमे संस्कृत के आखर मन ला फुटबॉल मा उपयोग होए वाला शब्द मन ले जोड़ के आसान रकम ले समझाए जाते। एखर ले सीखे मा आनंद मिलते, संगे संग खेल ले लोगन मन के जुड़ाव घलो बाढ़ते। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, पाछू इतवार विक्रम एक एखर सफल प्रक्षेपण ले हर देशवासी गौरव ले भरे हुए है। हम सबो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेन। ये निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत के पहली रॉकेट है। हमर युवा नवाचारी मन वो कर देखाइन जेखर कल्पना तको मुश्किल रहिस। वो मन गजब के कौशल, जज्बा और धैर्य दिखाइन। लंबा बखत तक हमर अंतरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्र पर बंद रहिस। ये क्षेत्र में रुचि रखने वाला बने अकन युवा मन ल अपन प्रतिभा दिखाए के मौका नहीं मिल पावत रहिस। युवा हित ल देखत हुए हमन अंतरिक्ष क्षेत्र ल निजी क्षेत्र पर खोलेन। आज ओखर परिणाम दुनिया देखत है। संगवारी हो, हमर युवा संगवारी विज्ञान मा घलो भारत के मस्तक ऊंचा करत हैं। साइंस ओलंपियाड दुनिया के सबले महत्तम के प्रतियोगिता मा एक है। एमे बड़का संख्या मा विद्यार्थी मन भाग लेते हैं। इही महीना भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित के ओलंपियाड होइस। ये प्रतियोगिता

प्रतियोगितामन मा भारतीय दल के प्रदर्शन शानदार रहिस। भौतिकी ओलंपियाड मा हमर सबो पांच विद्यार्थी मन स्वर्ण पदक जीतिन और भारत पहला स्थान प्राप्त करिस। पाछू एक दशक मा होए हर भौतिकी ओलंपियाड मा हमर देश के विद्यार्थी मन स्वर्ण या रजत पदक जरूर जीते हैं। रसायन शास्त्र ओलंपियाड मा घलो हमर सबो विद्यार्थी मन स्वर्ण पदक जीतिन। ये अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे है। जीव विज्ञान ओलंपियाड में घलो हमर सबो विद्यार्थी मन पदक जीते हैं। एमे एक स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित है। उन्हें गणित ओलंपियाड में हमर विद्यार्थी मन दो स्वर्ण और चार रजत पदक अपन नाव करिन। मुला देश के युवा शक्ति में बहुते गर्व है। ये देख के खुशी होते कि भारत में ओलंपियाड और हैकाथान के संस्कृति सरलग बढ़त है। मुला विश्वास है कि देश के ज्यादा ले ज्यादा युवा ऐसन फोरम में अपन रुचि दिखाही और भारत के ध्वजा घलो लहराही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, जब हुनर घलो हो और कुछ करे के जज्बा घलो हो ता हर रद्दा आसान हो जाते। कश्मीर के पारंपरिक चटाई वगूला लेके आज जेन प्रयास हुआ थे ओमे एखरे झलक मिलते। एला सरकंडा और धान के पैरा ले तिनका ले तैयार करे जाते। ये चटाईला बनाए के परंपरा कईयों बछर जुन्ना है। एखर बर सबले पहली कश्मीर के दलदली इलाका के घास और सरकंडा के कटाई करे जाते। धूप मा सुखाए के बाद छटाई होते और फिर शुरू होते हाथ ले बुनाई के काम। दो कारीगर मनला एक चटाई बनाए मा करीबन चार दिन लगते। ये चटाई अनूठा घलो है और पर्यावरण हितैषी घलो है। एक बड़का खासियत ये है कि आप मनला गर्मी मा एखर ले ठंडक मिलही और ठंडी मा गर्माहट। पहली ये कश्मीर के हर घर मा दिखत रहिस, फिर पाछू कुछ बछर मन मा एखर उपयोग कम होए लगे रहिस। ऐसन मा श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनखर बेटी तंजीला जी हा एक संकल्प करिन। दोनों वगू क्रॉफ्ट के परंपरा ला एक नवा जिंदगी देहे मा जुट गईन। गुलाम हुसैन जी बहुते साधारण परिवार ले आते। वो मनला ये काम मा कईयों रकम की चुनौती घलो आईस, फिर वगू के संरक्षण के उनखर संकल्प अडिग रहिस। देखते देखत उनखर ये प्रयास ले बहुत अकन लोगन मन जुड़त गईन। गुलाम हुसैन जी हा ये कौशल ला खूब बढ़ाइन। अपन मिशन मा उनला स्थानीय स्तर मा सरकारी सहयोग घलो मिलिस। आज तेजी ले लोकप्रिय होवत वगू देश के आने हिस्सा मन मा घलो पहुंचत है। मोला ये प्रयास ले जुड़े सबो लोगन ऊपर बहुत गर्व है। आज हम सबो मन के स्थानीय उत्पाद ऊपर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र ला लेके चलत हन। ऐसे मा कश्मीर के वगू घलो आप मन के घर के हिस्सा बने एखर बर एक घाव खचित सोचू। संगवारी हो, हमर देश मा चाय खाली एक ठन पेय नहीं है, ये अपनापन घलो हवय। बिहिनिया के शुरुआत हो, दोस्त मन ले भेंट हो या परिवार के संग कुछ पल बिताना हो, चाय हर मौका के हिस्सा बन जाते। वैसे ता आप मन घलो बने अकन जानथव मोर चाय ले नता का है। फिर आज मैं जेन चाय के चर्चा करत हूँ वह खाली स्वादे नहीं देवय, भलू कईयों बहिनी मन के जिंदगी मा आत्मनिर्भरता के नवा सुगंध घलो घोर दे है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के लखीवाला गांव मा स्व सहायता समूह ले जुड़े माई लोगिन मन विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार करे हैं। इमे लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्चा हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसन प्राकृतिक सामग्री शामिल करे गए है। अपन अनोखा स्वाद और गुण के कारण ये चाय है बहुत कम बखत मा
लोगन के

के बीच खास पहचान बनाए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में ये हर्बल चाय ला खूबे सराहना मिले है। विदेश ले आए लोगन मन ह घलो एमे रुचि दिखाए हैं। संगवारी हो, सबले प्रेरक बात एकर शुरुआत है। ये जम्मो प्रयास खाली 1 लाख रुपया ले शुरू होए रहिस। आज ये ब्रांड देश के बड़का संस्थान मन तक पहुंच चुके हैं। ये पहल हमन ला बताते कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और माई लोगिन मन के आत्मविश्वास साथ आते त एक नानुक प्रयास घलो बड़का बदलाव के शुरुआत बन जाते। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम ले लोगन मन प्रकृति के प्रति अपन दायित्व निभावत हैं। जब समाज ये भावना ले जुड़ते तब बहुते सुंदर और प्रेरक उदाहरण आघू में आते। संगवारी हो, अहमदाबाद में जन भागीदारी के अद्भुत शक्ति दिखे है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटा के भीतरी 3.5 लाख ले ज्यादा पौधा रोपे गईस। एमें 25,000 ले ज्यादा लोगन मन जुड़ियाइन। स्कूली लइका, एनसीसी कैडेट, स्वयं सेवक और आम नागरिक सब्बो मन ये अभियान में हिस्सा लेन। अवैया बछर मन में यही पौधा मन ह एक घना शहरी वन के रूप ले ही। ये प्रयास ल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करे गए है। संगवारी हो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत यूपी में घलो जनशक्ति के अद्भुत संकल्प देखे ल मिले है। वहाँ एक दिन में 12 जुलाई के 35 करोड़ ले ज्यादा पौधा लगाए गए है। यूपी के सांसद होए के नाता मोर बर ये घलो विशेष गर्व के बात है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, पेड़ खाली मनखे मन बर नहीं होए, वो अनगिनत जीव मन के घर घलो होते। गुजरात के गिर के जंगल मा करीबन 60 बछर बाद इंडियन ग्रे हार्न बिल फेर बसेरा बनावत है। ये गिर मा कईयों बछर ले होवत संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयास के परिणाम है। हार्न बिल ला जंगल के किसान कहे जाते। ये फल खाते और बीजा मन ला दूर दूर तक पहुंचाते। यही बीजा मन ले जंगल में नवा पेड़ उगते। यही रकम एक पक्षी जंगल ला फेर हरा भरा बनाए मा मदद करते। मैं आप सबो मन ले कहूं, हम सबो मन अपन जिंदगी के कोनो विशेष मौका ला प्रकृति ले खचित जोड़न। एक पेड़ माँ के नाम लगावन। आज के लगाए एक नानुक पौधा अवैया पीढ़ी खातिर हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य के विरासत बन सकत है। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, हम सबो मन जानथन कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरा दुनिया के पर्यावरण पर बड़का चुनौती बने हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरा कईयों बछर तक प्रकृति ला नुकसान पहुंचावत रही थे। यही पाए के प्लास्टिक के सही निस्तारण बहुते जरूरी है। संगवारी हो, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ के शानदार उदाहरण आघू में आए हैं। यहाँ कचरा के रिसाइकलिंग कर ओखर ले आकर्षक बेंच बनाए जाते। एक बेंच तैयार हुए में करीबन 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाते। ये मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होए के संगे संग पर्यावरण हितैषी घलो होते। एला सरकारी स्कूल, बगीचा और सार्वजनिक स्थल में लगाए जाते। एकर माध्यम ले लोगन मन में पर्यावरण संरक्षण ला लेके जागरूकता घलो बढ़त है। ये प्रयास में स्थानीय इकाई के साथे जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण भूमिका है। एकर ले स्थानीय स्तर में रोजगार के अवसर घलो पैदा होवत थे। सीतामढ़ी के ये प्रयास हमन ला बताते कि रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल आज खाली एक नारा नहीं, भलुक हमर जिंदगी के
हिस्सा बना

तक जात हे। संगवारी हो, आप मन ल सुरता होही, पाछूदारी मन की बात मा मैं गणेश उत्सव के बात करे रहे हूं। मैं आग्रह करे रहे हूं कि हमन ल अपन देश के माटी ले बने गणेश जी के पूजा करना चाही। जेन पीओपी ले बने गणेश जी होते या विदेश ले आए गणेश जी के मूर्ति होते, ओखर जगह हमन ल देश के माटी ले बने गणेश जी ल घर म स्थापित करना चाही। ये विषय म कईयों लोगन मन मोला संदेशा पठोए हैं और अपन विचार रखे हैं। लोगन मन ह बताइन कि वो मन मोर आग्रह ल अपनाए हैं। वो मन स्थानीय माटी ले तैयार होवैया गणेश जी ल स्थापित करे के संकल्प ले हैं। लोगन मन लिखे हैं कि मन की बात म पहलीच एखर ऊपर चर्चा होइस, एखर ले वो मन ल सही बखत म सही कदम उठाए म सहायता मिलिस। मैं एक घाव फेर अपन आग्रह दोहरावत हौं, ये पैत गणपति पूजा मा देश के माटी ले बने गणेश जी ल अपन घर में स्थापित करें, उनकर पूजा करें। आप मन के ये प्रयास घलो एक रकम ले प्रकृति के पूजा होही। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, अब मैं आप मन ल एक ऐसन मनखे के बारे में बताहूं जेखर बारे में सुन के आप मन ल बहुते गर्व होही। एक ऐसन मनखे जेन विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम करत हैं, दुनिया में जिनकर पहचान बनत है, फिर एकर बाद घलो वो अपन जड़ ले गहराई ले जुड़े हैं। मौका मिलतेच वो अपन माटी के सम्मान करना नहीं भुलावें। वो मनखे हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लाइश्राम जी। नाव उनखर रोनाल्डो है, फिर काम ले वो मन एक खगोल भौतिक वैज्ञानिक हैं। वो मन जापान में काम करते हैं और युवा आकाश गंगा के एक विशाल समूह के खोज करने वाला दल के हिस्सा रहे हैं। आप मन जानना चाहो कि वो मन आखिर का करे हैं? असल में वो मन ये जम्मो समूह के नाव मणिपुर के एक सुंदर झील ले जोड़ के लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखे हैं। लोकटक ताजा पानी के बहुते बड़ा झील है। लोकटक झील में तौरत फूम डी मिल के एक अनोखा प्राकृतिक दृश्य बनाते। ऐसा लगते कि विशाल समुद्र में नान नान द्वीप तौरत है। यही रकम ब्रह्मांड में ये युवा आकाश गंगा घलो एक विशाल संरचना के निर्माण करते। आज मणिपुर के लोकटक खाली देश के नक्शेच में नहीं, भलुक विशाल ब्रह्मांड में घलो अपन चमक बगरावत है। ये उपलब्धि हर भारतीय के गौरव बढ़ाने वाला है। एखर ले हमर युवा संगवारी मन ल सीख मिलते कि वो मन अपन परंपरा ले जुड़े रही के घलो नवा फूलिंग ल छू सकत हैं। ये ऐसन जड़ है जेन सितारा मन के दुनिया ला घलो जगमगा सकत है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, कुछे दिन बाद 7 अगस्त के हमर देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाही। ये मौका मा हम अपन बुनकर भाई बहनी मन के कौशल और उनकर सृजनशीलता के उत्सव मनाथन। हमर ये संगवारी कई पीढ़ी ले चले आत परंपरा मन ला आगू बढ़ावत हैं। संगवारी हो, हथकरघा ले बने हर परिधान कोनो न कोनो क्षेत्र समुदाय और एखर ले जुड़े असंख्य लोगन मन के कहनी ल आगू म लाथे। ये वो लोगन मन है जिन गर्व के संग भारत के सांस्कृतिक विरासत ल संजोए म जुटे हैं। आज के दिन मोर आग्रह है कि हम हस्तकला ल प्रोत्साहित करके अपन बुनकर संगवारी मन के सम्मान करन। आवाओ हम वोकल फॉर लोकल के भावना ल औ सशक्त करन। संगवारी हो, आज देश म जेन रकम हथकरघा ला बढ़ावा दिए जात हे, एखर ले बड़का संख्या मा लोगन मन के जिंदगी बेहतर होवत हे। पोचमपल्ली ले पटना और कुथमपल्ली ले कच्छ तक एखर कईयों उदाहरण देखे ला मिलते। आज ऐसने कईयों लोगन और समूह है जेन हथकरघा के हमर गौरवशाली परंपरा ला
नवा ऊर्जा

औ चिन्हारी देवत हैं। कोनो पोचम पल्ली इकत के सुंदर परंपरा ल आगू बढ़ावा थे, त कोनो महिला बुनकर मनला जोड़ के ऊनी उत्पाद बनावा थे। कुछ लोगन मन केरलम के पारंपरिक कसावू कला ला संरक्षित करत हैं। एखर ले हमर दाई बहनी मन ला रोजगार घलो मिला थे। संगवारी हो, एक ठन औ विषय जेखर मैं विशेष रूप ले उल्लेख करना चाहूं, वो है खादी। हम सबो मन जानथन कि खादी महात्मा गांधी ला बहुते प्रिय रहिस। पहाए कुछ बछर मन मा खादी बने अकन लोकप्रिय होए हे। पाछू 12 बछर मा एखर बिक्री 6 गुना बढ़े हे। बिक्री के ये आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपया के नजीक पहुंच चुके हे। मोरा आप सबो मन ले आग्रह है कि अवैया तिहार मा खादी के कोनो न कोनो हथकरघा के कोनो न कोनो हस्तशिल्प के कोनो न कोनो उत्पाद खचित बिसावें। मोर देश के मयारुक रवैया हो, अगर आप मन ले पूछे जाए कि भारत के कतका रकम के संगीत यंत्र है, त आप मन सोच में पड़ जाओ। ऐसा ये पाए के काहे कि हमर यहाँ बहुत अकन वाद्य यंत्र और उनखर ले जुड़े परंपरा है। यही रकम के एक यंत्र है त्रिपुरा के चोंग प्रेंग। ये वहां के आदिवासी समुदाय में बने अकन लोकप्रिय है। बांस ले बने ये वाद्य यंत्र में 3 ठन तार होते। एखर ले निकले धुन बहुते मधुर होते, जेन सरोद ले मिलते जुलते। कुछ कारण ले युवा मन के बीच एखर लोकप्रियता कम होके रहिस। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी है एला फेर लोकप्रिय बनाए के संकल्प लेन। आज उनखर प्रयास रंग लावत है। वो मन चोंग प्रेंग के संग वहां के आने पारंपरिक वाद्य यंत्र घलो बजावत रही थे। कोक बोरोक लोकगीत, बाउल गीत, बंगाली लोक वो मन ला खूबे भाथे। अब मैं आप मन ला एक नानुक क्लिप सुनाना चाहता हूं। ये संगीत ला आप मन कभू भूला नहीं पाहूं।

संगवारी हो, मोला विश्वास है एला सुन के आप मन के मन ला बहुते अच्छा लगे हो ही। मोला देव वर्मा जी ऊपर बहुते गर्व है। पारंपरिक संगीत ला लोकप्रिय बनाए के उनखर प्रयास बहुते सराहनीय है। मोर आग्रह है कि आप मन घलो अपन तीर तखार के पारंपरिक वाद्य यंत्र के जानकारी सोशल मीडिया मा खचित साझा कराओ। आप मन के ये प्रयास आने मन ल घलो पारंपरिक भारतीय संगीत ले खचित जोड़ही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, काली 27 जुलाई के भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व मा कईयों ठन प्रेरक रूप रहिस, फिर उनकर हृदय के सबले नजीक एक शिक्षक की भूमिका रहिस। वो मन लयिका और युवा मन ला बड़का सपना देखे खातिर प्रेरित करत रहिन। संजोग ले इही हफ्ता हम गुरु पूर्णिमा के पावन परब मनाबो। हमर दाई ददा हमर पहली गुरु होते, स्कूल के शिक्षक हमन ला आखर ज्ञान देते। गुरु पूर्णिमा ऐसने सबो गुरु मन के प्रति कृतज्ञता जताए के मौका है। मैं देश के सबो शिक्षक और गुरुजन मन ला श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करत हूँ। संगवारी हो, कुछ हफ्ता बाद हम अपन स्वतंत्रता के महापर्व घलो मनाबो। 15 अगस्त हर भारतीय खातिर गर्व के दिन है। ये वो असंख्य वीर मन के सुरता करे के दिन है जेन मन भारत माता के स्वतंत्रता खातिर अपन सब कुछ समर्पित कर देन। उनखर त्याग और तपस्या के कारण आज हमर हाथ मा

0: तिरंगा है। ये तिरंगा मां हमर संविधान के आदर्श है। संगवारी हो, पाछू कुछ बछर मन मा हर घर तिरंगा अभियान ह जम्मो देश ला एक अद्भुत भावना ले जोड़े है। हर घर हर गली मा तिरंगा के उत्सव दिखाई देते। ये बछर घलो हमन ला हर घर तिरंगा अभियान ला पूरा उत्साह के संग आगू बढ़ाना है। अपन घर मा पूरा सम्मान के संग तिरंगा फहराना है। संगवारी हो, हरे बछर 15 अगस्त ले पहली आप मन मोला बहुत अकन विचार और सुझाव पठो थाओ। ये बछर घलो आप मन अपन विचार मई जीओवी मा खचित साझा कराओ। मोला आप मन के सुझाव के अगोरा रही। संगवारी हो, मन की बात मा आज अतकिच। अवैया महीना हम फेर मिलबो देशवासी मन के अनेक नवा उपलब्धि और प्रेरक प्रयास मन के संग। तब तक खातिर मोला अनुमति देवाओ। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे आज रात 8 बजे आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: रायपुर केंद्र से रिले मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और अब हम जुड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
3: उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के अनहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म LOC करगिल से। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की। जावेद अख्तर की रचना है। अनु मलिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
6: सुनिए।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं और कुछ भाव होते हैं। उन शब्दों से आपको चुनने होते हैं गाने और उन भावों से लिखनी होती है आपको टिप्पणी। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा दें। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए खास तौर से, जो लोग जुड़ चुके हैं तो इन शब्दों को तो चुने ही, गानों को तो चुने ही, लेकिन इनमें जो भाव छुपे हैं, जो सवाल छिपे हैं, इससे जुड़ी हुई बातें भी साझा करें। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, ये आज की इबारत है जो पढ़ रही हूँ। जिंदगी एक रोज कान में कह गई एक बात, प्यार वो वृक्ष है जहाँ धूप छांव दोनों होते हैं। बताइए अब धूप छांव वाले गाने। गम की कड़ी धूप में कहती है जिंदगी, हाय वो दिन कहाँ गए, वापस क्यों ना आए। इस पर तो बहुत सारे गाने होंगे। फिर मुस्कुरा कर बोली जिंदगी, दुनिया एक मेला है, यहाँ हर चेहरा अपना नहीं होता, न मिले फूल तो कांटों से दोस्ती कर लो। फिर एक रोज जिंदगी कान में आकर धीरे से बोली, हर किसी की मोहब्बत में वफा नहीं होती, लेकिन बेवफाई का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। फिर एक रोज जिंदगी मुस्कुराई और बोली, लिखो एक खत और वादा करो। यहाँ पर कौन सा गाना आपको याद आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले पूरे करने हैं अपने सारे ख्वाब, नींद में देखे सपने भले कहाँ पूरे होते हैं, भला कहाँ पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं उनके जिनमें होता है हौसला, और फूलों से भी घर बना लेते हैं। फिर जिंदगी आखिरी बात ये बोली कि शिकायतें कम करो, सफर से मोहब्बत करो, जो राह चुनी है उसी पर चलते जाना। तो अब तो मुझे लगता है पढ़ने के बाद आपके जहन में बहुत सारे गाने कौंध रहे होंगे। कौन से वो गाने हैं जो इस वक्त कौंधे हैं, लिखिए जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप कीजिए, पहुंच जाएंगे वहां। और साथ में हमारी बातें और हमारे सवालों के जवाब भी देते चलिए। यहाँ आज एक शब्द आया है मेला, तो जरा बताइए कि मेले से जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में आए हैं, और आप ये भी बताइए कि मेला देखने आप पिछली बार कब गए थे और मेले से जुड़ी हुई कौन सी याद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम मेला वाला गाना यहाँ सुनाएंगे, जी नहीं, आप मेले वाले गाने चुनिए। अगर बहुत सारे श्रोता कोई अच्छा सा गाना चुन लाएंगे तो हम वही गाना आपको सुनवाएंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना फिल्म साथ साथ। पहली लाइन में ये शब्द कहीं आता है इस गाने से जुड़ा हुआ, जरा बूझिए और बताइए। हाँ, हीरो हीरोइन के नाम भी आपको पूछने हैं। तो आज आपको पूरे सफर में सुरीला सफर के साथ रहना है, और बीच बीच में जो सवाल हम पूछते जाएंगे उसके जवाब भी देने हैं आपको। हीरो हीरोइन का नाम फिलहाल बूझिए।

साथ साथ फिल्म की ये गजल थी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें थी, जावेद अख्तर के बोल थे, और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, दीप्ति नवल, फारूक शेख। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपकी इबारत की पहली पंक्ति में बिल्कुल सही वर्णन, प्यार में धूप छांव होती है, परंतु प्यार करने वालों को भी तो वृक्ष की तरह खुद धूप सहते हुए अपने साथी को छांव देना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, भाई एक नहीं अनेक श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने और मेले से जुड़े हुए बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखा है, और दुनिया का मेला, मेले में लड़की, और दुनिया ये मेला है, और मेले पर तो बहुत सारे गाने भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने, जो फिल्म गुप्त का है उदित नारायण की आवाज़ में, दुनिया हसीनों का मेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल है सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के यथार्थ और मोहब्बत के सुकून का अनूठा संगम है। ये गाना सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि जीवन में सच्चा हम सफर हो तो जिंदगी की धूप भी घने साए में बदला जा सकता है। जरा बताइए कि अब कौन सा वाला गाना हो सकता है, क्योंकि जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, कि गाना आया आपके जहन में क्या? अगर इसके अलावा कोई गाना आया हो तो बताइए, हम फिलहाल यही गाना सुनवाते हैं, फिल्म अनुराधा। आपको बूझना है कौन हीरोइन कौन हीरो, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी बताइए। फिल्म अनुराधा। और मेले से जुड़ी हुई याद भी साझा कीजिए।

ये जो गाना था इसका शब्द बाकायदा जो इबारत है इबारत की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन इस गाने का जिक्र बहुत कम मिला। हालांकि बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अनगिनत गाने लिख रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसके जीवन है वो नाम, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कवि प्रदीप की रचना है। और ये बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं, जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, फिल्म मेला। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, फिल्म साथ साथ का एक कालजयी गीत सुनाया आपने, और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियां आई हैं और हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना। ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है, वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है, लेकिन शहर और वहां के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये गाना, ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो जरा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है? मेले में कौन सी चीज आप जाकर खरीदा करते थे? क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो खरीदते थे? और खिलौने, मिट्टी के, लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे, वो याद आया? और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी, क्या वो भी याद आया? और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थाम कर, माँ की उंगली थाम कर मेले में आप घुमा करते थे, और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था। कभी ऐसा भी हुआ? मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो जरूर बताइएगा। अगर आपने टिप्पणियां भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

मेला फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे। और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था। और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है। और ये जो मेले वाला गाना था, इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और वो मजा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के जमाने में खास तौर से यह एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी की आवाज जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, दिल की अतल गहराइयों में उतर जाती है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में उज्जैन कुंभ मेला, संतों की भीड़ भरी रैली में माता जी का हाथ छूट गया, शाम को जाकर पुनः उसी जगह माता जी और अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई, राहत की सांस ली। एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में तो मेला देखने बहुत जाते थे, कुल्फी चाट पानी के बताशे खूब खाते थे और खिलौने खरीदने के लिए पैसे पहले से बचाने लगते थे। विजयदशमी पर तो मेला लगता ही था, उसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती। क्या बात है भाई, पानी वाले जो बताशे जिसे पानी पूरी भी कहा जाता है, और मेले में झूले झूलने का मजा भी होता था, एक श्रोता ने लिखा है। और मेले में जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता था जो अनुभव, वो था जो हिंडोला, जो बड़ा वाला हिंडोला गोल गोल चलता है, तो जब ऊपर की ओर जाता था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था, ऐसे लगता था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई और बिल्कुल दिल मुंह में चला आया है ऐसे। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना है, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह, तभी पूरा होगा जब हौसला हो। अब ये महल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है, जरा बताइए गाने में कौन कौन से शब्द हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिल ही नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला जरूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन जरूर मैं खरीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़ी

या भी फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास, कीमत हर माल 6 आना का खरीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और 1 महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। सचमुच एक जमाना था जब मेले में नौटंकी भी खेली जाती थी, तो नौटंकी देखने के लिए अलग से घर वालों से परमिशन लेना पड़ता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ? एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमारे इंदौर शहर के गांधी हॉल में सावन का मेला लगता था और उस मेले में हर सोमवार को बहुत भीड़ होती थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत पीपल के पेड़ पर रस्सी पर बंधा हुआ पटिया लगा हुआ झूला हुआ करता था। अब बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, सपने, वादा, वफा, कांटे, दुनिया, दिन वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगी या दुखद। प्रेम है, प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। टूटने बिखरने की पीड़ा, धोखे का दर्द और प्रेम की राह पर आने वाले धूप छांव, इन सब से इतर वो जब होता है तो बस होता है। आप चाहें न चाहें वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, बूझिए कौन है हीरो और बूझिए गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है? इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है? हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, जरा ये बताइएगा। और जो अभी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है जरा हम बता दें। जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफर की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफर में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें। जरा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियां याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई। तो जरा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्यौहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज़ खरीदता हूँ। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप जरा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतजार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो जरूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि

बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए, और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा, जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहां विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है। कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें, और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं और ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल है, जो चलती है, तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल, अपने अपने अनुभव। लेकिन वो जो असली मेला लगता था, खुले मैदान में बहुत सारी चीजें होती थीं, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था। एक छोटा बड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया, और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की खरीदारी हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है? वो वाला मेला, बचपन वाला, ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था, जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे। बचपन में गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल, बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही

0: पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफर में वही यादों का सफर है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी जिंदगी का हिसाब देखता हूँ तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये जिंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही जिंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है। हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी, और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है, और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारे हिंदी की किताब में होती थी। हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जलता जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे, और इस वजह से दादी ने पाला था, और बहुत गरीबी में पाला था। और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो हामिद को ईद के दिन क्या तोहफा दें, क्या लाएं, और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो। यहाँ दादी सोच रही होती हैं और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ जलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं, और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफ़ी आज़मी के बोल रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है, परीक्षित साहनी जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, यहाँ कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं

प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आंख खुली और टूट गए। नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है। कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। जरा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं। फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें। हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

फूलों के शहर में घर अपना, भाई सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी भारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने फौरन बताया कुमार गौरव, विजेता पंडित। एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और लाल, गुलाबी, पीले रंग के छोटे आकर्षक फूल खिलते हैं और ऐसे कैक्टस फ्लावर्स, पौधे की पूरी सतह पर कांटे होते हैं। लेकिन अब वक्त नहीं कि हम पूरी टिप्पणी इनकी पढ़ें। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए। अब इतना बता दें, आज का सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। बस आज का सफर इतना ही।

श्रोताओं नमस्कार, आज है कारगिल विजय दिवस। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज की त्रिवेणी इसी विषय पर। 26 जुलाई भारत के इतिहास का बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की और दुनिया के समक्ष अपनी वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इसी ऐतिहासिक जीत की स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध मई से जुलाई तक चला, सन 1999 में, लगभग 60 दिनों तक। ये 60 दिन हमारी सेना ने पूरी वीरता के साथ, पूरे संघर्ष के साथ युद्ध किया।

किया। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और टोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ये कब्जा हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता था क्योंकि इन क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर इन क्षेत्रों से निगरानी रखी जा सकती थी और यह सिद्ध हो सकता था घातक भारत की राजधानी के लिए भी।

0: परेशान है तू।
1: भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से दुर्गम पहाड़ों, शून्य से नीचे तापमान और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराकर हमारे वीर जवानों ने विजय का इतिहास रचा। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिक शहीद हुए। कैप्टन विक्रम वत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे वीरों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा का नारा ये दिल मांगे मोर आज भी भारतीयों के हृदय में जोश भर देता है। हम सभी इन वीरों की वीरता को प्रणाम करते हैं। 527 वीरों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

कारगिल विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की एकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और सैनिकों के अदम्य साहस की विजय थी। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षित सीमाओं को और शांतिपूर्ण जीवन के पीछे हमारे सैनिकों का त्याग और बलिदान है। आइए इस अवसर पर हम उन सभी वीरों को श्रद्धा पूर्वक नमन करें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लें। सरहद पर खड़े हुए प्रत्येक वीर को हम सभी धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कुछ ये कि सरहद पर खड़े सैनिक केवल भूमि की रक्षा नहीं करते, वे करोड़ों भारतीयों के सपनों, विश्वास और भविष्य की भी रक्षा करते हैं। सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और हमारी रक्षा में अडिग अचल खड़े हुए प्रत्येक जल थल नभ के सैनिक को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, विधि जैन को नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य

0: की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को

0: दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
0: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
0: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए

0: ये गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर

0: रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजा अध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

भीगी रात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। छोटी छोटी बातें ये

छोटी छोटी बातें, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहेगी।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगर गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल, धनराज बांसीवाल की, श्री गंगानगर से, दमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना विलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य, इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल, यहीं से मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, रमेश, आनंद, अन्वित और इनके परिजन। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर, दीपक और आसमा।

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव। अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हजरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित डांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं हंसा जाता।
2: सही बात है।
3: इस कॉफी हाउस के गोशे की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।

0: काफी साहब,
1: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
2: ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीटती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
1: हाँ, मैंने भी सुनी।
2: आखिर वो किसको बुलाता है?
1: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
3: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
1: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
4: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
1: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
5: हाँ, ये तो है।
4: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: कोई डॉक्टर नहीं।

0: गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओ, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओ, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है।

कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने सुलह भी तो की है अपनी फौजिया पर।

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अब अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर।
1: नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ? कुछ नहीं,
1: पहेलियां ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा। मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत।
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखूं।
0: फौसिया,

0: हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
1: मगर क्यों?
0: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और फर्रुख मेरी

0: तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा? लेकिन क्यों, क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा।
2: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा बाजा, रुक जा।

0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सोहेल साहब आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे क्यों?
0: हाँ।
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे?
0: तो तुम नहीं मानोगे तो लो भाई, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
2: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
2: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घुल लगा दिया है। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया।
2: अरे ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चैन नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
2: बस करो सुहैल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ, देख देख मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
3: कौन? नीलम।
2: हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
3: मेरी

0: सुहेल कहाँ है?
1: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया।
0: मेरा आखिरी सलाम।
1: फौजिया
0: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
1: नहीं फौजिया,
0: अब मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम, नीलम मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
1: फौजिया।

0: की ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी
0: औसी मेरी बच्ची,
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी?
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूं।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूं।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब,

0: फौजिया मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया तो मैं उसकी मां तो नहीं,
1: मां की ममता से इसकी झोली भरती।
2: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ,
0: फौजी मेरी जिंदगी है
2: नीलम जी।
0: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
2: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
0: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
3: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब्बी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
3: आप रोइए नहीं अब्बी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
2: खड़े हो जाइए?
3: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
0: नहीं फौजी, ये तुम
3: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
2: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
3: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
3: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब आप खुश
1: फौजी
0: मेरी बच्ची।

प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं। जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए। और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविजन नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए। और अरुण को तो 3 साल अलका जी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था और अलका जी साहब फिर आगे वहां रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्य द्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पे नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंसवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे के। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद

0: में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने,
1: जी
0: जितने थे वो 3-4 शो में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
1: वाह वाह
0: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे। और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर। तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं। वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को
1: राजी नहीं
0: राजी
1: थे।
0: नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे, और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके 10 रुपए में 25 रुपए में जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए, एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुनाह तो था ही, हाँ। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा, उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिर गिर आए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ दिया कि हम फला दिन को हम आपके अप दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड।
1: जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में,

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा
1: हाँ जी
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ, एक
0: लगातार किए।
1: पंजाबी में भी किया
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्हार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी
1: हाँ,
0: किया था उसको लेके,
1: नहीं टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया। हाँ, और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, यार समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और 5-6 दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जा तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है, वगैरह
0: अरे
1: वगैरह वगैरह।
0: बाप रे,
1: और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था
0: फगवाड़ा
1: चंडीगढ़
0: का,
1: का, और
0: चंडीगढ़
1: कहाँ
0: का।
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे, और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है, हाँ वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी, और जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो

0: इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी
1: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया,
0: जी
1: मराठी नाटक
0: जी
1: पंजाबी में होने
0: जी
1: लगा।
0: हाँ
1: यहां से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
0: दूरदर्शन, अब मुझे याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता, लेकिन
1: जहां तक मुझे याद है आप
0: इसमें
1: आकाशवाणी भवन गई थी।
0: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर
1: जी
0: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
1: डिक्शन, जी
0: हाँ
1: जी
0: डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
1: बड़े दिग्गज लोग।
0: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
1: ओहो
0: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
1: श्याम
0: था
1: बेनेगल
0: श्याम
1: के एक्टर,
0: बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
1: दस्तक
0: की
1: फिल्म,
0: हीरोइन, फिर राकेश पांडे
1: जी
0: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन
1: उनको लेके
0: भोजपुरी
1: एक फिल्म
0: सिनेमा का,
1: लॉन्च हुई थी संगत,
0: किसकी
1: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
0: हाँ
1: लॉन्च हुई थी पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
0: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
1: उसमें
0: उसका
1: थे
0: हीरो था
1: जी,
0: हाँ राकेश,
1: बाद में
0: वेरी
1: वासुदा ने
0: वेरी
1: एक
0: नाइस
1: फिल्म
0: फिल्म।
1: लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
0: अच्छा
1: वो हीरो थे पर वो बनी नहीं।
0: वो नहीं नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
1: स्टार बन
0: बच्चन
1: गए
0: है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, अभी मोटे वोटे हुए थे तब
1: जी
0: दुबला
1: जी
0: पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया
1: शैलेंद्र
0: बहुत
1: सिंह
0: मजा
1: वगैरह भी
0: आया।
1: थे। अच्छा
0: नहीं, मेरे क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे, तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे,
1: वाह वाह
0: हाँ
1: वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी द मेजर कमिटी मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली सही, बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि ना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से,
1: जी
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया, और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है,
0: कि
1: ये
0: हाँ
1: ख्वाब भी नहीं था
0: ख्वाब
1: कि
0: भी नहीं
1: अब
0: था,
1: ये जगह
0: हाँ
1: जिंदगी ले
0: ये
1: जाने वाली
0: मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए,
1: है। जी
0: और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहाँ चुनी गई मैं, और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे भारत के, पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या
0: कहने
1: शानदार
0: कह
1: बात है,
0: हाँ
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: नाज के साथ मैं कहती हूँ, और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे
1: पी
0: कुमार
1: कुमार
0: वासुदेव,
1: वासुदेव
0: पी
1: जी,
0: कुमार वासुदेव जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी
1: ओहो
0: और हबीब तनवीर थे,
1: क्या बात
0: हाँ
1: है, वाह वाह
0: लेकिन
1: वाह,
0: हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में,
1: वाह
0: तो विच
1: वाह,
0: इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड सो इट वॉज फैबुलस, इट मैजिक।

0: years in television. और वहां ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देयर वाज नो एग्जांपल, यू नो, कि ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर, ये बीबीसी से आए थे, वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह. लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे,
1: जी
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविज़न में, और मज़ा भी

0: एक्सपेरिमेंट्स करते रहे,
1: जी
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मज़ा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई,
0: जी
1: अबू अवार्ड जीता।
0: हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ,
1: जी
0: तेहरान में।
1: वो चाय की टपरी वाला
0: हाँ जी,
1: जो
0: वो
1: वाली
0: छोटी
1: डॉक्यूमेंट्री।
0: सी फिल्म थी, 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं,
1: जी
0: हाँ, टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी। चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और
1: बिल्कुल
0: वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहाँ ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मज़े से उसका चल रहा था, और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग। तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ, मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
1: जी जी
0: हाँ,
1: पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया।
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री।
1: जी
0: तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
1: हैंड
0: उनका
1: पेंटेड पोस्टर्स।
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वैराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहाँ वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सगा, पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्छे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहाँ हम पहुँच गए तो क्या बात करें वो लोग, और जब मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई, हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात
0: तुम
1: है।
0: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे दे के टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा, अजी, हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी, और
1: वाह
0: ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की, और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक, तुम देखोगे खुश हो जाओगे, और वो चलता है, वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है, वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा, कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी, दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो, क्योंकि
0: वो
1: अब तो
0: कॉम
1: पोस्टर सब
0: कॉम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो
1: हैं
0: गई।
1: ना। एम एफ हुसैन मिले थे
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक
1: जी।
0: यू, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा,
1: परंपरा थी।
0: हो,
1: जी
0: तोबा तोबा, मैंने कहा, अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन, तो बहुत खुशी से वो, हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी।

0: वो पोस्टर मैंने बनाया, और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटी की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था
1: जी
0: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की,
1: अरे अरे
0: अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई। ये ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
0: कठिन
1: तोलो तो ये नाराज
0: ये,
1: वाला जो
0: हाँ
1: मामला था
0: नहीं,
1: वो
0: वो
1: बताइए।
0: कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को।
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए, तो फटाफट मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को। वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ, वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद,
1: हाँ
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे, वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज, ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है, वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह बोला
0: पुकारते
1: करते थे और
0: थे।
1: खरजदार आवाज से
0: हाँ
1: रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के बोलते
0: माय डियर सिस्टर करके, फिर हम भाग के जाते थे पंकज दा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया, और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवारे
0: मतवाले, हाँ
1: तिहारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके, थाली लेके, और आप गाना गाओ, तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया, और फिर दादा उसमें रंग में आए, और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे, हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह
0: ऐसे
1: वाह,
0: क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किस्से सुनाए ये करिया, फिर अब राय चंद बोराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर, और रायचंद बोराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन।
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं, हाँ, मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बोराल साहब के पास गए, बोराल जी ऐसा था, नहीं
1: अरे
0: पंकज से
1: बाप
0: उसके
1: रे
0: बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये, अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
1: कैसे
0: मैंने
1: मनाया
0: कहा
1: जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलां का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि
1: वाह,
0: पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को अपनाया आपने।
0: हेमंत कुमार, बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की, इस तरह हमारी फिल्म बन गई। लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है,
1: ओ हो,
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना पंकज
1: जी
0: मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार,
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है। 40s की फिल्म है, शायद
0: जी
1: 41 की
0: जी
1: फिल्म है,
0: जी
1: आई
0: जी
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहां दो नए ना मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
0: विच इज नॉट एट ऑल ट्रू।
1: आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था। तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। इनफैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हरसेल्फ अरुणा ईरानी डाइज, यू नो, in the film. So again, and Lataji was with us for

0: a long, long time. तो देर वॉज नथिंग, रियली नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल
1: लोगों
0: अ
1: ने जबरदस्ती इसका कनेक्शन बना लिया
0: बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी.
1: जी।
0: हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइफ. बट आई टेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वॉज ब्लू इन द फेस. पर लोग मानने को तैयार ही नहीं, दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई. पर अब एंड
1: राकेश साहब को
0: अनफॉर
1: कैसे राजी किया?
0: हाँ, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, वो बहुत मान गए. ही गेव गुड म्यूजिक, बट आई हैड फोर म्यूजिक डायरेक्टर्स टू
1: जी,
0: दम.
1: पहली बार ऐसा हुआ।
0: या क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल. सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेंद्र हजारिका,
1: जी
0: फोर पीपल. एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टुगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स,
1: जी
0: नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल. हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया. बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड, तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए. एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड, एक भी फिल्म 2-3 दिन से ऊपर नहीं, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक. एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So Saaz didn't have a theatre.
1: अरे
0: So
1: अरे
0: फिर
1: अरे
0: टेलीविजन पे दिखाई,
1: जी जी जी
0: तो ऐसा ऐसा हुआ. सो बैड लक ऑल द वे. सो इट्स नॉट बीन अ, जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस, तो अनफॉर्चुनेटली Saaz वॉज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी.
1: जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो
0: जी
1: एक
0: जी
1: तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए
0: हाँ
1: मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव
0: संजीव
1: कुमार
0: कुमार हाँ,
1: या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं
0: वो
1: जानना चाहता
0: अभी
1: हूँ।
0: वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है.
1: जी,
0: तो
1: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटक था, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही. फिर
1: जी
0: मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था,
1: जी
0: मेरे घर दिल्ली में, मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था. हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है, और वो बढ़िया ये रोल करेगा. फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो. मैंने कहा हाँ हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है. मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट. मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं. तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट, और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था. ऐसे 5-6 दफे हुआ, और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी. तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है, और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही, और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है या मुझे ये कर रहा है. और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ. तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई. अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे. वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, और उसकी मौसेरी या

0: बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा, जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है वो हवा में नहीं लिखा जाता,
1: जी
0: लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है। वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो, कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई, है संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही।
1: ओरिटरी वाला
0: फिर
1: सारा
0: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ, और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ, तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए, और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव्ड द स्क्रिप्ट, एंड देन शबाना इज नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेड अ गुड कपल यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल्ड टू बेस्ट, और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है
0: हाँ
1: कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे
0: जी
1: नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो
0: हो
1: और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य
0: जी
1: रूप से
0: जी
1: हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं,
0: हाँ
1: जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका
0: हाँ
1: नजर आता है। तो
0: बिल्कुल
1: इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहां खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूं,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी, जी
0: या
1: जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए।
0: हाँ
1: नसीर का जिक्र क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया,
0: जी
1: तो वो ड्रामा के डायलॉग

0: बात हुई थी,
1: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल के
0: नॉवेल के
1: कहो,
0: डायलॉग में
1: हाँ
0: बात हुई थी।
1: नॉवेल, और चार्ल्स डिकेंस
0: यस
1: जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ये अच्छे, मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग, लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है, नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब, एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिक हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूं कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो
0: ये
1: चैप्टर
0: बात
1: स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए, जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी, हाँ,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि
0: उसका
1: मेरे
0: नाम
1: और
0: है
1: काम
0: एंड
1: भी,
0: देन वन डे।
1: एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा,
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ, उसका नाम है बार्किस,
0: बारकिस।
1: बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे
0: कनेक्शन
1: को
0: है।
1: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा। और पेगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए, तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
0: चिकनी
1: चिकनी
0: चुपड़ी।
1: चुपड़ी। हाँ, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग, मतलब
0: वाओ।
1: बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग,
0: वाओ।
1: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है, क्या है।
0: हाँ
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड।
0: क्या बात है, इसको कहते हैं
1: नहले
0: नहले पे दहला।
1: पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो
0: जी
1: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
0: यस
1: अकादमी का।
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
1: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो।
0: जी
1: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
0: जी
1: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है। हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ, उनका पूरा काम देख के। तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा, और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा, और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ, अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे, और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान झमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज, सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को

0: हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर गया। ऐसे नहीं नहीं हो गया हो गया, मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम ना। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर
1: नेशनल
0: अवार्ड,
1: अवार्ड।
0: नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे, संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा, बड़े जिंदा दिल थे। तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सर कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तोप अदा की। तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए, बोलते अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता। बट दैट वाज अ वेरी
1: जिंदगी
0: स्वीट।
1: की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है, का
0: जब
1: कोई
0: बताइए
1: मुकाबला
0: जरा
1: नहीं।
0: कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, इट्स वंडरफुल।
1: 3 अवार्ड्स मिले थे।
0: जी, एक पटकथा के लिए, मेरी मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ
1: वो बताइए।
0: वो वहां बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था,
1: जी
0: बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे, बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है,
0: यस,
1: वाह।
0: एंड ही हैड अ टेररिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वाज गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब, अच्छे स्टार से। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत
1: अनुभव।
0: गलत है कि स्टार हो तो। इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बासु। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश सियाल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बेचारी अकाउंटेंट बन गई।
1: लेकिन ये मजेदार बात है, ये
0: सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही
1: जी।
0: बासु का।
1: यहां मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे।
0: हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो मेरी
1: मेरी
0: जान,
1: जान मुझे जान
0: हाँ,
1: कहो,
0: क्या
1: गीता रॉय
0: बात
1: की
0: है,
1: आवाज।
0: कनू रॉय,
1: हाँ
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है,
1: जी
0: प्लीज
1: जी
0: जरूर जरूर सुन।
1: क्या बात।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़ केसर छतौली इंजानी बरपटिया पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी केवरा करंजवार पार्वतीपुर बंसीपुर बगड़ा सिंघरा भरदा दलदली गणेशपुर मदन नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज धमनी और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया महावीरगंज कनकपुर टकिया शिवपुर इंद्रावतीपुर कामेश्वर नगर सिलाजू आनंदपुर गोपालपुर मुरका अतौरी ठरकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा लखनपुर उदयपुर सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये असकला दोरना जरहाडी अरगोती तिरकेला तप्ताझरिया लोटाढोड़ी लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार महेशपुर मानपुर जगन्नाथपुर झिरमिटी शिवनाथपुर सरगा पेटला ढोढ़ा गाँव चोरकी पानी बैडाण बरवाली कंडराजा रानीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गड़ाकटा पंडरीपानी फरसकानी चेटबा मड़ियाझरिया सोनाजोरी खड़ा माचा राजा आमा महेशपुर झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 107 है। ये सिंघी छाप बोजिया इंचपारा बायसी गेरसा नागदरहा पोटिया आमगांव आमापाली सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये मदनपुर केरा कछार पसर खेत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर जडगा केंदई और

0: सान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, धनरास, आमा टिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, कापा नवापारा, परला, चोटिया, लमना, कोयलार गडरा, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटा झरिया, पंडरी पानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बरबसपुर, सैया भाटा, ताल दादर, तेंदुचुआ, पकरीद, हरदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म सरफरोश का ये गीत। शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, महिला सभा कार्यक्रम हेतु सूचना सुनिए। साथियों, फोन करें गीत सुनने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 यानी कल सोमवार को सुबह 11 बजे से 11 बजकर

30 मिनट के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752 और फ़ोन नंबर है 2665902। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म बॉम्बे से। स्वर दिया है चित्रा एवं साथियों ने, शब्द रचना है महबूब की और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, अमित कुमार और अनुराधा पौंडवाल की आवाजों में फिल्म बागी से। शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, महिला सभा कार्यक्रम हेतु सूचना सुनिए। साथियों, फोन करें गीत सुनने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 यानी कल सोमवार को सुबह 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, जन्म बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फोन कर सकती हैं। बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752 और हमारा फोन नंबर है 2665592। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म हम आपके है कौन का। ये गीत स्वर दिया है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम ने। रविंद्र रावल की रचना है, राम लक्ष्मण का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप।

0: जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म धरती से। स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश कवाणकर, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से हमारे श्रोता साथी हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी रॉय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहानकर, निर्मला, विशाल नवहानकर, सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, साथ में हैं गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, श्रीरामपुर से अशोक कुमार दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, लोहारी डी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, सीता, गीता, जसवीर, जस्सी, चिरमिरी कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म धरती का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति, टिंकू और मुस्कान, नतरिंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश कुमार और राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाविया और आरव खुराना, सहारनपुर से आशु, गुनौर से नसीमुल इस्लाम, फरदीन अब्बासी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीना विविधा वंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमंड पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, कालेगांव जफाराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सर्वद देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म वो कौन थी का ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, राजा मेहंदी अली खान की रचना है, मदन मोहन का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी, साहिल, भारती बघेल, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, बुल्ढाना से अमोल मानकर, शोभा दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजपति, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एस एम जावेद और शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, शेख रहीम मुन्ना, राबिया शेख, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म रास्ते प्यार के का ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम ने, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के इस भाग का आखिरी गीत लीजिए सुनिए, फिल्म मासूम से। स्वर दिया है आरती मुखर्जी ने, गुलजार की रचना है आरडी बर्मन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लोरमी चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश, पांडुरंग कुमार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, नवीन सौरभ, साइना शर्मा और मैंडी शर्मा, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और आयान, खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और दिशा गोस्वामी, हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहां और इनके साथी हैं नाजिया, नूरी और नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोट के नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, पंजाब से परेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश, वीरमगांव राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म मासूम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मासूम का ये गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का ये भाग अब यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, संध्या के 6:00 हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आज रात 8 बजे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात का प्रसारण आकाशवाणी रायपुर से किया जाएगा। कानून की बात में आज जानकारी दी जाएगी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। जानकारी देंगे श्री चंद्रहास साहू, अधिवक्ता जिला बालोद। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। शाम 7:20 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज बेरा के गोठ में आपसे बातों का विषय होगा नान्हे लैकन के अच्छा पोषण जरूरी है। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। रात 8:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात 9:15 से रात 11 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल रात 8 बजे संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, आगे की जानकारी इस अंतराल के बाद।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों, क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: श्रोताओं, कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर कार्यक्रम खेती की बात में कल जानकारी का विषय रहेगा मिर्च की खेती। वाचन स्वर रूपेश कंवर का होगा। 6:45 पर नौविहान कार्यक्रम में पोषण अभियान विषय पर चर्चा की जाएगी। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम अमराई में कलाकार होंगे भागवत सप्रे भी।

यादव, नीलिमा जॉन और उनके साथी। सुबह 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। कल शाम 5:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा जगत। इसमें आज की बात में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र पर चर्चा, साथ ही सुनिएगा क्रम मेरा शहर। प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने। शाम 7:20 पर कल ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें बीरा की गोट का विषय रहेगा पशुधन के समुचित देखभाल। साथ ही सुनिएगा भेंट वार्ता। रात 8:15 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीकंधा का। श्रोताओं, ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और उसके बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

वहीं नवंबर दिसंबर महीने में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के प्रवेश पर भी चर्चा हुई। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ योग आयोग बस्तर में योग युक्त बस्तर अभियान शुरू करेगा। आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बीते 15 जुलाई को बीजापुर में आश्रम और छात्रावासों में कार्यरत योग प्रशिक्षकों की बैठक ली। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के माध्यम से बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को नियमित योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग गतिविधियों का विस्तार कर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि नए शिक्षा सत्र से विद्यालयों में योग को अधिक प्रभावी ढंग से शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रोताओं, बीजापुर जिला प्रशासन ने नागरिक सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड बनाने, परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने और नाम हटाने की सुविधा शुरू की है। नई सेवाओं के संचालन के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवा सेतु संचालकों और कॉमन सर्विस सेंटर के ऑपरेटरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को राशन कार्ड से जुड़ी नई ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन, अनुमोदन की प्रक्रिया और सेवा सेतु पोर्टल के संचालन की जानकारी दी गई। नई सेवाओं के शुरू होने से लोगों को राशन कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। कृषि विभाग के उपसंचालक पीएस कुसरे ने बताया कि इस योजना के तहत धान, कोदो, कुटकी, रागी, मूंग, मक्का, अरहर, उड़द और मूंगफली सहित कई फसलों का बीमा कराया जा सकता है। योजना का लाभ ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के पात्र भूधारक किसान ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विभाग के जिला और विकास खंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बीजापुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 पर जिले का पहला ट्री एटीएम स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर आसानी से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराना है। इसके तहत डीएवी स्कूल में सीड बॉल निर्माण प्रशिक्षण और वन महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जामुन, नीम, साजा, इमली, आम और अमलतास के बीजों से बड़ी संख्या में सीड बॉल तैयार किए। वहीं वन महोत्सव के तहत विद्यार्थियों और अतिथियों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धमतरी का CG25 राइडर्स ग्रुप मॉनसून बाइक यात्रा के तहत

0: बीजापुर पहुंचा। राइडर्स ने जिले के नंबी जलप्रपात सहित कई प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण किया। यात्रा के दौरान राइडर्स ने जिला कलेक्टर विश्वदीप से सौजन्य भेंट की और उन्हें अपने ग्रुप का आधिकारिक बैच भेंट किया। CG25 राइडर्स ग्रुप ने लोगों से देखो बस्तर आओ बीजापुर का संदेश देते हुए बीजापुर की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने की अपील की। श्रोताओं, जिले में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से लौटकर समाज के मुख्यधारा में शामिल हुए और नुआबाट पुनर्वास केंद्र में रह रहे युवाओं को रविवार 19 जुलाई को बस्तर के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का भ्रमण कराया गया। जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित इस भ्रमण में पिछले 2.5 महीने से वेल्डिंग का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने हिस्सा लिया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में अभी आप बीजापुर जिले की चिट्ठी सुन रहे थे। आलेख के संतोष कुमार का था। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज देशवासी मन ले करीन मन की बात, कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा में जल संरक्षण के उद्यम ला सहराइन। आज छत्तीसगढ़ समेत जम्मो देश भर में मनाए जावत है कारगिल विजय दिवस, और कोरबा और सूरजपुर जिला में गाज गिरे ले 4 लोगन के मौत। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज देशवासी मन ले मन की बात करीन। ये बेरा प्रधानमंत्री है कहिन कि भारत है रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देश मन के मामला में सरलग नवा ऊंचाई ला छुआ थे। आज कारगिल विजय दिवस आए, ये मौका में प्रधानमंत्री है कारगिल के वीर शहीद मन ला स्वर्यावत कहिन कि आज के दिन है देशवासी मन ला अपन बहादुर सैनिक मन के वीरता और बलिदान के सुरता देवा थे। उमन यहू कहिन कि कारगिल के ऊंच ऊंच पहाड़ी, कठिन और बदरा मौसम, दुश्मन के चुनौती और हर परिस्थिति हमार सैनिक मन के आगू आईस, फिर उखर हौसला हर चुनौती ले बढ़कर रहीस। ओमन माँ भारती के रक्षा बर अपन सर्वस्व अर्पित कर दीन। प्रधानमंत्री हा मन की बात कार्यक्रम मा कैच द रेन अभियान के गोट करत छत्तीसगढ़ के कोरबा मा जल संरक्षण बर करेगे सुघर उद्यम ला सहराइन। उमन कहिन कि एह कैच द रेन के सोझे संदेश आए कि जब वर्षा होही तब वो पानी ला उहे सकेले जाए। एखर सेती 4 जुलाई ले देश भर मा एक ठन विशेष अभियान चलाए जावत हे। एखर तहत वर्षा के पानी सकलाए और जुन्ना जल स्रोत के मरम्मत और पौधा रोपण ला नवा गति दे जावत हे। प्रधानमंत्री है खुशी जतावत कहिन कि गाँव हो या शहर, पंचायत हो या सामाजिक संस्था, हर जगह लोगन मन बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाइन। उमन कहिन कि छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में अभियान के सुघर परिणाम देखे बर मिलत हे। देश भर में 7 अगस्त के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाही। प्रधानमंत्री हकीन कि ये दिन देश के बुनकर मन के कला कौशल और सृजन के सम्मान के प्रतीक आए। प्रधानमंत्री हा स्वतंत्रता दिवस ला सोर्यावत सबो लोगन ले 15 अगस्त ले पहली माई GOV पोर्टल मा अपन विचार और सुझाव भेजे के आग्रह करीन हे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के फाफाडीह के दया भवन मा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ला सुनीन। एखर बाद मुख्यमंत्री हकीन कि प्रधानमंत्री के घेरी बेरी छत्तीसगढ़ की गोठ करई हा प्रदेश भर गर्व की बात है। ये दारी प्रधानमंत्री हा कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा मा वर्षा के पानी बचाए के उदिम ला गजब सहराइन। ये बेरा मुख्यमंत्री हा यहू बताइन कि राज्य सरकार हा जल संरक्षण ला जन भागीदारी के अभियान बनाही। केंद्र सरकार हा काली लोकसभा मा लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करही। ये विधेयक सोमवार बर लोकसभा के कार्यसूची में शामिल है। एखर उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। आज जम्मो देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जावत है। ये मौका में बछर 1999 के कारगिल युद्ध में देश के रक्षा करत सर्वोच्च बलिदान देवैया भारतीय सैनिक मन ला श्रद्धांजलि दे जावत है। आज के दिन हाँ ऑपरेशन विजय के सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ऊपर भारत के ऐतिहासिक जीत के प्रतीक आए। ये मौका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी

0: राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा मातृभूमि बर परान देवैया वीर सैनिक मन ला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। एति राजधानी रायपुर में घलो कारगिल विजय दिवस के मौका में शहीद मन ला श्रद्धांजलि दे बर स्मृति साइकिल रैली निकाले गिस। ये रैली मध्य भारत एरिया मुख्यालय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया के सहयोग ले आयोजित करेगीस। ये रैली रायपुर ले शुरू होके नवा रायपुर के सेंध झील पहुंचीस। इमा 100 ले ज्यादा लोगन हिस्सा लीन। प्रतिभागी मन में सेना के अधिकारी और जवान, पूर्व सैनिक, माइलोगन, युवा और लड़का शामिल रहीन। ए बेरा सबो जन साइकिल चला के कारगिल के वीर शहीद मन ला श्रद्धांजलि देवत देशभक्ति और एकता के संदेश देन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी हा आज शिक्षा मंत्री के पदभार संभालीन। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद कालिज श्री जोशी के नियुक्ति ये पद पर हो रही। उमन उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के संग नवीन और नवकरणी ऊर्जा मंत्रालय के घलो प्रभार संभालत रही। पदभार ग्रहण के बाद उमन आने यानी योजना और कार्यक्रम के जानकारी के सेती शिक्षा मंत्रालय के समीक्षा बैठका करी। ए बेरा उमन बताई कि मंत्रालय की कार्य प्रणाली और नियम कार्यक्रम ला समझे बर ये बैठका करत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगू बढ़थन बांचे समाचार कोती। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुंगेली जिला के पथरिया नगर पंचायत में मनोनीत पार्षद मन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईन। ये मौका में उप मुख्यमंत्री श्री साव हा कहिन कि राज्य सरकार हा पथरिया के विकास पर सरलग कार्य करत है। ये बेरा ओमन नगर में मांगलिक भवन, मुक्तिधाम और नगर पंचायत के सभा कक्ष बनाए बर 3,16,00,000 रूपया मंजूरी दे के घोषणा करी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामला में प्रवर्तन निदेशालय ईडी हा पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ला गिरफ्तार करे है। ईडी हा ओमन ला रायपुर के विशेष अदालत में पेश करीस जिहा ले ओमन ला 7 दिन के हिरासत में ईडी ला सौंप दे गए है। एखर ले पहली ये मामला में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI हा घलो टामन सिंह सोनवानी ला गिरफ्तार करी रही जेखर जांच चलत है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के टीम हा बलौदाबाजार में पीतल उद्योग ले जुड़े कारोबारी राजकुमार सराप के घर और आने आने ठिकाना में छापामार कार्यवाही करीस। एखर तहत अधिकारी मन दस्तावेज और आने लेन देन के जांच करत हैं। धमतरी पुलिस हा नशा के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्यवाही करत करीबन 35,85,000 रुपया के अवैध संपत्ति ला रोक दी से। ये कार्यवाही NDPS और सेफेमा कानून के तहत करेगीस। पुलिस के अनुसार जांच में 2 मामला में आरोपी मन के बैंक खाता, फिक्स डिपॉजिट, गाड़ी और आने आने संपत्ति के जांच करेगी। पुलिस के कहना है कि आगू भला नशा के अवैध कारोबार ले सकेले गए अवैध संपत्ति मन के चिन्हारी करके ऐसा कार्यवाही करे जावत रही। कोरबा जिला के कटघोरा ले लगे सलोरा छुरी गांव में खेत में बूता करत बेरा गाज गिरे ले 3 लोगन के मौत हो गए। मिले जानकारी ले 25 ले 30 ग्रामीण खेत में बूता करत रही इही बेरा मौसम बदली सब गाज गिरे ले 3 लोगन ओखर चपेट में आ गिन। ओती कोरिया जिला के बैकुंठपुर में घलो खेत में गाज गिरीस। ये बेरा खेत में बूता करैया 6 माइलोगन झुलस गिन जे मल्ला तुरते इलाज बर जिला अस्पताल में भर्ती कराएगी जी हाँ 2 जन के हालत गंभीर बताए जावत है। एति सरगुजा जिला के लखनपुर थाना के बिनिया गांव में घलो खेत में रोपा लगावत बेरा गाज गिरे ले 1 जन नान चुन्नोनी के मौत होगी। उन्हें 2 जन आने लोगन झुलस गिन जिकर अस्पताल में इलाज चलत है। राज्यपाल रमेन डेका आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय डहर ले पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर चलाये जवैया राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ करीन। 9 अगस्त तक चलैया ये यात्रा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आने आने इलाका में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता के संदेश देवत जबलपुर पहुंची। जसपुर जिला के

एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आज ले 26वीं राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ होइस। ये प्रतियोगिता 29 जुलाई तक चलही। प्रतियोगिता के उद्घाटन जसपुर विधायक रायमुनि भगत करी। ये प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग मन के 240 खिलाड़ी मन भाग लेवत हैं। और अब जानो मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी और ओखर ले लगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट में एक ठन निम्न दाब के प्रभाव ले अवैया 2 दिन तक

0: के खाड़ी अउ ओखर ले लगे पश्चिम बंगाल अउ उत्तरी ओडिशा के तट में एक ठन निम्न दाब के प्रभाव ले अवैया 2 दिन तक प्रदेश के कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग भारी ले अति भारी वर्षा होए के घलो चेतावनी दे गई है। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज देशवासी मन ले करीन मन की बात। कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा में जल संरक्षण के उद्यम ला सहराई। आज छत्तीसगढ़ समेत जम्मो देश भर में मनाए जावा थे कारगिल विजय दिवस। और कोरबा और सूरजपुर जिला में गाज गिरे ले 4 लोगन के मौत। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का दूसरा भाग।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के इस भाग में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म मेरा साया से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, राजा मेहंदी अली खान की रचना है, मदन मोहन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक, कमल, लक्सर बिहार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजीता पाल, प्रभा, प्रियांशी शर्मा, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा दिवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्री दिवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, दतरिंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, नेपानगर से प्रखर, कुशल, सुदर्शन शाह, पल्लवी, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म मेरा साया का ये गीत।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के इस भाग का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म परख से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र की रचना है, सलील चौधरी का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नानघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रितु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और इनके साथी हैं कैदीपुरा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत, सादुलशहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन, वली अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म परख का ये गीत।

0: फिल्म परख के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये भाग यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम कानून की बात।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता चंद्रहास साहू।

0: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, महिलाएं घर की धुरी होती हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो चाहे घर में रहने वाली महिलाएं हों, इनके प्रति एक उदारता का भाव रहना आवश्यक है, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी एक महिला और पुरुष दोनों की होती है। लेकिन महिलाएं घर के लिए, बच्चों के लिए आवश्यक निर्णयों में अपने घर के हर व्यक्ति के साथ बराबर के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। और जब बात करते हैं हम महिला सशक्तिकरण की, तो बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को समाज में उनका दर्जा प्राप्त करने में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि कई बार सुनने को मिलता है कि कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, या घरों के अंदर उनके साथ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कहीं ना कहीं उनसे उनके लिए हिंसा का एक माहौल बनता है, और महिलाएं भी कभी कभी इसके लिए जागरूक नहीं होती और इस घरेलू हिंसा को काफी समय तक सहने के बाद वो एक मानसिक पीड़ा से गुजरती हैं, जिससे उन्हें मानसिक आघात तो लगता ही है, साथ में सामाजिक तौर पर भी वो कमजोर हो जाती हैं। तो श्रोताओं, ऐसी स्थिति में भारत के संविधान में इनके लिए प्रावधान किए गए हैं, घरेलू हिंसा से इनके बचाव के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, और कानून की बात कार्यक्रम में आज हम इसी से संबंधित एक घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है चंद्रहास साहू जी को, जो अधिवक्ता है जिला न्यायालय धमतरी में। तो चंद्रहास जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो चंद्रहास जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं।
1: घरेलू हिंसा की परिभाषा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दी गई है। इसकी परिभाषा है कि किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला जो कि उसके रिश्ते में थी या है को शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने की चेष्टा करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इस परिभाषा के अंतर्गत महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या उसके लिए महिला से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार को परेशान करना या प्रताड़ित करना भी इसमें शामिल है। ये घरेलू हिंसा की परिभाषा है जो अधिनियम में दिया गया।
0: जी जी। तो चंद्रहास जी, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कानून में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के लिए?
1: सर, इसमें महिलाओं के लिए प्रावधान है कि यदि वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोर्ट जाते हैं तो न्यायालय उनके लिए बहुत सारे ऐसे आदेश कर सकती हैं जिनके लिए वो पात्र होते हैं। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके पक्ष में बहुत सारे आदेश दे सकती है, जैसे साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार दे सकती है उनको। साझी गृहस्थी घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी साझेदारी में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई हक फायदा हित रखती हो या न हो। इसी प्रत्यर्थी को महिला को साझी गृहस्थी से निकाल नहीं सकता। दूसरा ये है, धारा 18 के तहत इसमें महिलाओं को मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला को और प्रत्यर्थी को एक बार सुनने के पश्चात यह संभावना होते हुए कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, महिला के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित कर सकता।

सकता है। इसके तहत पहला, घरेलू हिंसा के किसी कार्य या आचरण व्यवहार को करने पर रोक लगा सकती है कोर्ट। दूसरा, घरेलू हिंसा के कार्यों के करने में सहायता या दुष्प्रेरित करने पर किसी व्यक्ति को रोक सकती है कोर्ट। घरेलू महिला के काम करने के स्थान पर, उसके बच्चे के विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां महिला एक बार महिला का बार बार आना जाना है, उस पर प्रत्यर्थी या रेस्पोंडेंट को आने से रोक सकती है। पीड़ित महिला से प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संपर्क पर रोक, इसके अंतर्गत मौखिक, लिखित, दूरभाषी, फोन पर बातचीत या इलेक्ट्रॉनिक संपर्क भी शामिल है। इसके तहत एक और प्रावधान है, संपत्ति के हस्तांतरण करने पर, जैसे बैंक लॉकर है, बैंक खाते का चालान होता है जिसमें दोनों पक्षों के नाम पर बैंक अकाउंट है, तो उस पर भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालन पर रोक लग सकती है। और पीड़ित महिला की सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य प्रकार का संरक्षण का अधिकार भी माननीय न्यायालय के द्वारा इनको दिया जा सकता है। इसी तरह से धारा 19 के तहत महिलाओं को पृथक निवास का अधिकार कोर्ट के आदेश के बाद मिल सकता है। मामले का समाधान करते समय जब मजिस्ट्रेट को विश्वास हो जाए कि घरेलू हिंसा हुई है, तो मजिस्ट्रेट महिला को उसी घर में या प्रत्यर्थी के खर्च पर कहीं और निवास का आदेश दे सकता है। निवास आदेश में निम्न प्रतिबंध भी लगा सकता है, साझी गृहस्थी में महिला को न निकालने का आदेश दे सकती है, प्रत्यर्थी को उस साझी गृहस्थी से स्वयं हटने का आदेश दे सकती है, पीड़ित महिला की साझी गृहस्थी घर के उस हिस्से में जिसमें वह रह रही है उसमें प्रत्यर्थी या उसके किसी रिश्तेदार के प्रवेश पर भी रोक लगा सकती है। पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी के स्तर के अनुकाल्पिक वास या किराए के मकान की सुविधा दिलाना, जैसे वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी। महिला को इसके स्त्रीधन, किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी वह हकदार है, कब्जा लौटाने का आदेश दे सकती है। इसके बाद धारा 20 के तहत आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता का भी इस अधिनियम में प्रावधान है। पीड़ित महिला व उसके बच्चों को उसकी जरूरत के अनुसार व्यय और नुकसान की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता देने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसके बाद है कमाई की हुई हानि की पूर्ति भी आदेश हो सकता है उसमें न्यायालय के द्वारा। चिकित्सकीय खर्चे की पूर्ति का भी आदेश हो सकता है। पीड़ित महिला के नियंत्रण में से किसी संपत्ति का नुकसान या हटाए जाने के कारण हानि की भी पूर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 21 के तहत अभिरक्षा का आदेश भी शामिल है। इसके तहत पीड़ित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा का आदेश भी मिल सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि प्रत्यर्थी को किसी प्रकार की मुलाकात बच्चों संतान के हित में नहीं है या हानिकारक है, तो वह प्रत्यर्थी के बच्चों से मिलने पर भी रोक लगा सकती है। इसके बाद आता है इस अधिनियम के प्रावधान धारा 22, हर्जाना या मुआवजे का आदेश भी माननीय कोर्ट या न्यायालय दे सकती है। इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा, मानसिक यातना, भावनात्मक चोट भी शामिल है कि एवज में प्रतिकार व क्षतिपूर्ति का आदेश भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त धारा 23 ये कहता है कि एक पक्षीय आदेश न्यायालय दे सकती है, यदि मजिस्ट्रेट को यह संतुष्ट हो कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कर रहा है या की है अथवा करने की आशंका है, तो वह शपथ पत्र को संज्ञान में लेते हुए धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के तहत एक पक्षीय आदेश भी दे सकता है। उसके बाद धारा 29 के प्रावधान ये हैं कि पीड़ित महिला को यदि प्रारंभिक न्यायालय, विचारण न्यायालय से कोई लाभ नहीं मिलता या उनके पक्ष में फैसला नहीं होता, तो पीड़ित महिला जो है धारा 29 के तहत जो है माननीय सत्र न्यायालय में अपील भी कर सकती है। इसके बाद एक प्रावधान और है, इसमें धारा 31 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर दंड। अधिनियम के अंतर्गत यदि रेस्पोंडेंट द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग किया है तो इस कानून के अंदर अपराध होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को 1 साल की सजा या 20,000 रूपये तक का जुर्माना भी माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। घरेलू हिंसा से जो

0: प्रभावित महिलाएं हैं वो अपने शिकायत में अपने लिए संरक्षण मांग सकती है, अपने लिए पृथक निवास की व्यवस्था करवा सकती है, अपने बच्चों के लिए पृथक से व्यवस्था करवा सकती है, और ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस कानून के तहत महिलाओं को दिए गए हैं। शिकायत जिन्होंने हिंसा की है, चाहे वो उसका पति हो, पति से रिलेटेड जो रिश्तेदार हों उनके खिलाफ कर सकती है, या फिर इस परिभाषा के अनुसार वो अपने मायके पक्ष के जो लोग हैं जिनके साथ वह पूर्व में रह चुकी है उनके द्वारा यदि उनके साथ अत्याचार होता है या किसी प्रकार से उनको अड़चन होती है तो महिला इस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ भी शिकायत कर सकती है।
1: तो चंद्रहाल जी, घरेलू हिंसा संबंधी जो संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसे प्रभावी रूप से लागू कैसे किया जा सकता है?
0: सर, इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं को कानूनी रूप से साक्षर बनाया जाए सबसे पहले, और दूसरा चीज है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, और तीसरी बात है महिलाओं को शासन की जो मंशा है कि महिलाएं जो है अग्रसर हों, उन्नति की ओर कदम रखें, तो उनको निश्चित रूप से उनके पक्ष में जो कानून हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी बनाती है उनके विषय में जानकारी होना भी अति आवश्यक है।
1: जी चंद्रहास जी, महिला यदि कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसे अपनी शिकायत कहाँ करनी चाहिए?
0: सर, महिलाएं जो हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसी चार जगह हैं जहां पर वो शिकायत कर सकती हैं। एक तो है आपका संरक्षक अधिकारी। संरक्षण अधिकारी इस कानून के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिलों के लिए एक या एक से अधिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करता है, तो उनके समक्ष लिखित आवेदन देकर या फिर मेल से या फिर फोन से भी शिकायत दर्ज करा सकती है। और इसके तहत दूसरा जो अधिकारी है पुलिस अधिकारी है। राज्य शासन के द्वारा प्रत्येक पुलिस थाना के थानेदार को या थाना इंचार्ज को ये आदेशित किया गया है कि महिलाओं से संबंधित जो भी पीड़ित महिला है उनको मतलब सख्त से मतलब जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधिकारी भी कार्रवाई करेंगे। तीसरा है संस्था है एक सेवा प्रदाता समिति होती है जिनको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं एनजीओ। एक गैर सरकारी संस्था है जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होती है, और इनके भी वही कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो सेवा प्रदाता जो समिति है वो पीड़ित महिलाओं को हर प्रकार के कानूनी सहायता उपलब्ध कराए और निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराए। और एक है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट भी जो है विशेष परिस्थिति में किसी घरेलू हिंसा के मामले में सीधा संज्ञान ले सकता है। सर,
1: तो चंद्रहास जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि घरेलू हिंसा से बचने के लिए और इसके बारे में जानकारी के लिए महिलाओं जागरूक होना कितना आवश्यक है?
0: देखिए, महिलाएं जो है जब तक जागरूक नहीं होंगी तब तक वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगी, तो जागरूकता जो है किसी समस्या से निपटने का एक और उनसे संबंधित कानूनों को जानने का एक बहुत अच्छा जरिया है। सर, तो हम ये आशा करते हैं कि जो महिलाएं हैं हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी के महिलाएं हैं उनके जो पक्ष में जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके विषय में उनको ज्ञान होनी चाहिए और उनके विषय में उनको जागरूक होना अति आवश्यक है, तभी वो अपने लिए बनाए गए अधिकारों को वो हासिल कर पाएंगी और सही तरीके से उनके लिए बनाए गए कानूनों का सदुपयोग हो पाएगा।
1: श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे चंद्रहास साहू जी से, जो अधिवक्ता हैं जिला न्यायालय धमतरी में, और बात कर रहे थे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में। चंद्रहास जी, कानून की बात कार्यक्रम में आज आपने हमारे श्रोताओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: कानून की बात कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप कानून की बात कार्यक्रम में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर अधिवक्ता श्री चंद्रहास साहू से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे रमाशंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
15: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का किया उल्लेख। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। और केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन

0: विधेयक 2026 पेश करेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ के कोरबा में जल संरक्षण और भू जल पुनर्भरण की दिशा में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का भी उल्लेख किया गया।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGOV पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के फाफाडीह स्थित दया भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बार बार छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाएगी।
2: बड़ा शोभा का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में जो ताम्रपट मिला है वो सब का जिक्र करते हैं। आज भी कैच द रेन, उसमें कोरबा का उन्होंने जिक्र किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं।
0: कारगिल विजय दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मृति साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली मध्य भारत एरिया मुख्यालय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया के सहयोग से आयोजित की गई। रैली रायपुर से शुरू होकर नवा रायपुर की सेंध झील तक पहुंची। इसमें 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में सेना के अधिकारी और जवान, पूर्व सैनिक, महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल थे। सभी ने साइकिल चलाकर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और देशभक्ति तथा एकता का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठकें कर रहे हैं। ये बड़ा और महत्वपूर्ण

0: विभाग है और उनकी प्राथमिकता शिक्षा मंत्रालय के कार्यों को पूरी तरह से समझना है ताकि वे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें और नई पहल लागू कर सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। कोरबा जिले के कटघोरा से लगे सलोरा छुरी गांव में खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीणों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 25 से 30 ग्रामीण छुरी बकरा बाजार सब स्टेशन के पीछे स्थित खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान मौसम बदल गया और खेत की मेड़ पर सीधे आकाशीय बिजली आकर गिरी, जिसकी चपेट में 3 ग्रामीण आ गए। उधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही 6 महिलाएं झुलस गई हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। इधर सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के बिनिया गांव में भी खेत में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 7 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व अध्यक्ष टावन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने उन्हें रायपुर के विशेष अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। इससे पहले इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भी टावन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग की टीम ने बलौदाबाजार में पीतल उद्योग से जुड़े कारोबारी राजकुमार सराफ के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इसके तहत अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। धमतरी पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 35,85,000 रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। ये कार्रवाई NDPS और सेफेमा कानून के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार जांच में 2 मामलों में आरोपियों के बैंक खाते, फिक्स डिपॉजिट, वाहन और अन्य संपत्तियों की जांच की गई। पुलिस का कहना है कि आगे भी नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों के पहचान कर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। राज्यपाल रमेन डेका ने आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के लिए आयोजित राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। 9 अगस्त तक चलने वाली ये यात्रा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति जन जागरूकता का संदेश देते हुए जबलपुर पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुंगेली जिले के पथरिया नगर पंचायत में मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि राज्य सरकार पथरिया के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने नगर में मांगलिक भवन, मुक्तिधाम और नगर पंचायत के सभाकक्ष के निर्माण के लिए 3,16,00,000 रूपये मंजूर करने की घोषणा की। जशपुर जिले के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शाले हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये प्रतियोगिता 29 जुलाई तक चलेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन जशपुर विधायक राय मुनि भगत ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों के 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का किया उल्लेख। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। और केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से

0: खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया
1: तो
0: होगा।
1: अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
0: एडमिशन कराने हैं,
1: खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का शेष भाग।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम के इस भाग में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म बरसात की रात फिल्म से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, साथ में हैं रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्री, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, सोनू एंजल भाटिया, जालंधर से संदीप जंटौलिया, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल ढावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, प्रिंस सुमित और ध्वनि गवाणकर, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाउद्दीन। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म बरसात की रात का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए महिला सभा कार्यक्रम हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं, फोन करेगी सुनी का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 यानी कल सोमवार को सुबह 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन की झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752 और हमारा फ़ोन नंबर है 2665592। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगली ईमेल की ओर। अगला ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, रसीड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेस, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव और देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश रजौनी से उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, पोड़ी भाटा अकलतरा से हमारे श्रोता साथी हैं दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जिशाद अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर।

और जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरु किरत और गुरु शब्द सिंह राहुल, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुरेश राजपाल, पंकज, शीतल, सोनू, मुकेश कश्यप, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म गुड्डी का ये गीत। स्वर दिया है वाणी जयराम ने, गुलजार की रचना है और बसंत देसाई का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए सुनिए, फिल्म प्यासा सावन से सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, संतोष आनंद की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और गाविया मल्होत्रा, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, निधि, निखिल, यश।

प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला, आसमा श्याम कुंवर, टिकरी पारा से जागेश्वर दिवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा दिवांगन, कुम्हार बेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, शादाब खत्री, लुथरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श और आतिका, ठाकुरवाला लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरुनूर, गुरुलाल और अविरा सिंह, रिंगनी से हमारे श्रोता साथी हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, पुतली कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, तीव्रता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम और चंद्रपाल मरावी, साथ में है लक्ष्मी थदवानी, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, बागपत से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, नवागढ़ कटई से हमारे श्रोता साथी हैं नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म प्यासा सावन का ये गीत।

प्यासा सावन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम ग्राम सभा का। आइए श्रोताओं अब चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जमो किसान भाई बहनी मिला वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम जय जोहार। किसान भाई बहनी हो देखो मौसम बड़ा अच्छा है, पानी गिरा थे पानी गिरे ले, हम सब किसान किसानिन मन के काम बुता भदरा है, थरहा लगाए के काम, खेत फटकाए के काम, आनी पानी के दलहन तिलहन लगा के काम चला था। तो ये जिन काम है वो सब है अन्न के उत्पादन हमार किसान करते और अन्न से हमार शरीर के पोषण होते। कहक मतलब सियान हो चाहे जवान हो चाहे लड़का हो, और शुरुआती अगर हमन के अच्छा होवत है जैसे कि हमार नान नान लैकन है तो उखर पोषण में हमला बहुत जरूरी है कि उखर पर हमला ध्यान देना है। भाई बहनी हो लैकन मन देश हमार परिवार हमार घर हमार समाज और हमार प्रदेश के भविष्य होते। अगर बचपन ले सही पोषण मिली तो ये मन उखर जिन स्वास्थ्य है वह बड़ा अच्छा तगड़ा और पढ़ाई लिखाई है घलो बढ़िया मजबूत हुआ है, आगे अच्छा उमन पढ़ी लिखी आगू बढ़ी देश गांव घर सबके नाम रोशन करी। जीवन के पहली 5 बच्छर माँ लैकन के शरीर और दिमाग सब ले तेजी ले बढ़ते किसान भाई हो, एकर सेती सही खान पान बहुत जरूरी है। जन्म के एक जन घंटा के भीतर माँ जिन्हें लैका ला अपन दाई के दूध गोरस पिलाए बर चाहिए। 6 महीना तक के सिर्फ दाई के दूध देव, एकर बाद दाई के दूध के संग माँ घर के बने नरम और पौष्टिक खाना घलो देवाओ मल्ला, जैसे कि दाल है भात है खिचड़ी है हरियर साग भाजी है अंडा है मौसमी फल है और दूध देना बहुत जरूरी है। लैका के खान पान माँ जैसे कि रंग बिरंग के सब्जी है दाल है अनाज और फल जरूर होए, साफ सफाई घलो ध्यान रखो खर बर, खाना बनाए और खिलाए के पहली साबुन ले हाथ धोओ जेखर ले बीमारी के बचाव हो सके। सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम ले पूरक पोषण देवत हवे, वजन जांच और पोषण संबंधी सलाह घलो देते। अच्छा पोषण स्वस्थ बचपन और उज्जवल भविष्य के आधार आए। संगवारी हो कार्यक्रम ला आगो बढ़ावो उकर पहली आवा ये संदेश सुन लेथन।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जशपुर खैरागढ़ छुई खदान गंडई कोरबा महासमुंद कोंडागांव रायगढ़ राजनांदगांव नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित धान असिंचित मक्का मकई सोयाबीन मूंगफली तुअर अरहर मूंग उड़द कोदो कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी मार्गदर्शन सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते

0: या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: किसान भाई हो, अब आप मन बढ़िया चेत लगा के बैठो। आज आपन बल ले आए हैं छत्तीसगढ़ी फरमाइश गीत के कार्यक्रम आप मन के गीत। आप मन पठोरी था गीत सुने बर अपन फरमाइश करे रही था, तो आप मन की पुनः मैं स्वागत करता हूँ वीरू वीरेंद्र भाई। अब चालू करत हन फरमाइश गीत, और गीत के पहली आप मन ला हम बता दी संगवारी हो कि देखो पर्यावरण जेन होते ना हमारे सबों के सबले बड़े धन आए पर्यावरण, रुख राई नदी नाला हवा और पानी के बचाव रख करबो तबे हमर जिंदगी सुखमय रही। ए बरसात मा हर परिवार कम ले कम एक ठन रुख जरूर लगावा और ओखर देखभाल करो, प्लास्टिक के उपयोग कम करो, पानी के बचत करो और गांव गली ला साफ सुथरा रखो। अब आपन पठवा है पत्र, तो ये चिट्ठी हमारे हाथ में है। तो पहला चिट्ठी है संगवारी हो, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, देवरी भाटापारा ले गन्नूलार रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, हानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या, कुमारी टानिया रजक। आप अनहाव संगवारी हो, ग्राम बंगला मटिया बालोद से श्री कुमार अंगारे, अंजनी त्रम्बिका, लीना अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। आप मन हो साहूपारा पौड़ी लाफा से राम सनेही, विद्यानंद साहू, मीना साहू, ब्रह्मानंद परमानंद, संध्या प्रियंका, हर्ष प्रज्ञा, तन्मय महिमा, रोमांस आनंद साहू। आप मन हो संगवारी हो नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, स्थान लुतरा खमरिया से हो आप मन। आप मन हो ग्राम मोहम्मदपुर भक्तिन बाजार अकलता रले रमेश केवर्त, राजकुमारी आरती केवर्त, बेलगहना शक्ति भरा ले बाबा श्याम शंकर, बाबा विजय पायलट, रागनी गीता देवी, कैलाश चंद्रवती, कुसुम काशीपुरी, राधा पड़वार और बाबा बुद्ध गिरी। आप मन हो हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। तो आप सब सुनना चाहत हो ये गीत स्वरहावा भीखम धर्मा करके, तो रूप गजब, तो आवाज सुना था ना आप सबके पसंद में ये पहला गीत।

आओ आओ कार्यक्रम ला आगू बढ़ावा थन। आगू पसंद करिए संगवारी मन हमारे ग्राम रसेड़ा अकलतरा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू, डीकेश कुमार, वासु डाली, पूर्वेश साहू, आप मन हो तेली पारा बिलासपुर ले रजन साहू, बेबी सानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनिता श्रीवास, आप मन हो छत्तीसगढ़ बेमेतरा ले श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाप्या सारथी, श्रीमती सुषमा सारथी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले राष्ट्रपाल गज भिये, राधिका बेबी अनिस्का और तन्मय गज भिये, आपन हो किसान भाई हो संगवारी हो ग्राम बशीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, कुमारी आचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार वर्षा, डॉक्टर मनोज कुमार कंवर, शांति नगर पाली से हो आपमन विष्णु

सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, कुमारी प्रतिमा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और जमो कोरम परिवार। आप मन हो ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्गले हो पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर। आप मन हो बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हो। आप मन बागबहरा भदरसी ले हो पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। और आप मन हो संतोष खडसे, विनोद खडसे, यवत माल विदर्भ ले हो आप मन। और ये संगवारी मन है हमारे दतरिंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। आप मन हो सुभाष वार्ड भाटापारा ले एमएल यादव, अजय कुमार, अमित, अमीन, गिरीश करण, युवान, धावेश यादव, हथबंद निर्धाले। आप मन हो सेवक राम यादव, दुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार, देव कुमार यादव। आप मन हो तो आप सबके पसंद में आवा सुनथनी गीत स्वर हवाए ममता चंद्राकर कुलेश्वर ताम्रकार के।

तो संगवारी हो, अमरैया के तीर आ जाबे ना भैया, जब जंगल झाड़ी रहते तो बड़ा आनंद आते और मिलल रहते तो अमरैया की तीर आ जाबे ना। ये सुगर भाव भरे गीत सुनते हैं। आगो गीत सुने के पहली एक तो और सुझाव आप मला दे देते हैं किसान भाई हो, किसान भाई बहनी मन बर निवेदन आपन से करत हन कि खेत की मेढ़ मजबूत रखो, पानी निकले के सही इंतजाम करो, बिजली चमके या गरजे के बखत खेत में काम झन करो। पशुपालक भाई बहनी मन अपन गाय भैंस ला सुखा चारा और संगे संग गीला जेन हरियर चारा भी खवाओ, साफ पानी पियावाओ, समय समय में जेन सौनाही टीका है या जेन प्रकार के टीका सरकार द्वारा लगाए जाते वो टीका ला अपन पशु मला जरूर लगवाओ और संतुलित आहार देवाओ। अब आप कार्यक्रम आगू बढ़ावा थन और ये जिन फरमाइश करत है गीत सुने बर चांदनी चौक गंडई पंडरियाले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन, आप बुड़गहन ले रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, दत्त रेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, रोहासी से डगेसर राम साहू, आपके जमो परिवार हो और आप मन हो मोती गार्डन भाटा पारले, मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार झेरिया भाटापारा से ही है आपन राम कुमार राउत, अमरीका, गणेश, कार्तिक, युवराज राउत, हटरी बाजार भाटापारा ले आपन हो मोतीलाल देवदास, श्रीमती गौतम, मुकेश और पवन गोलू देवदास, दामन बोर्ड से आपन हो कुमार यादव, श्रीमती अमृत यादव, कामदेव यादव, लेखुराम यादव, आपन हो भाटापारा दतरिंगी से ही हो द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से हो अपन डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश कुमार, तारणी ठाकुर, सूरज कुमार, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, आपन हो भूर सुदा छत्तीसगढ़ भगवानी, चिराग, संतोषी, गजेंद्र, चंद प्रकाश, नेहा सेन, पिंडरा पाठेग्राम धोपा टोल ले आपन हो पवन कुमार सुटी, बबली संतोषी, कैलाश कुमार, श्याम शंकर और राजू भाई। तो आओ आप सबके पसंद में सुनथन बेहतर राम साहू और आशा साहू के शर्मा, तोला काटा गड़े कस लाघी, चाटी चाबे कस लाघी।

बहुत जुन्नतः गीत ला आप सब सुनना चाह रहे हो संगवारी हो और अब कार्यक्रम ला आगू बढ़ाथन एक बार पुनः आप जमो सुनत हो कार्यक्रम ओखर स्वागत मैं वीरू बीरेन्द्र भाई करत हूँ। तो ले अब ये संगवारी मन हवा मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामनी वर्मा आप मन हो भाटापारा ले श्याम रतन मुधड़ा रचनाकार मुधड़ा रावण भाटा भाटापारा से बबला यादव रिखी राम यादव श्रीमती कमलेश्वरी यादव आप मन हो पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका और भानु प्रिया दिवाकर आप मन हो भाटापारा ले बजकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत दिगु विनय ठाकुर चुवाराम वर्मा सूरज बारिकर और नारायण यदु लेखराम यदु राधेश्याम टेलर आप मन हो सिया राम और आप अश्वनी पांडे आप मन हो पिंडरा धनगवाले बरपारा छत्तीसगढ़ ले कैलाश चंद्रवंशी सुरेंद्र संजना दरकेश श्याम शंकर प्यारेलाल सोनवानी दुर्गेश मनीषा उट्टी। तो आवाओ आप सबकी पसंद में सुनथिनी गीत जेला स्वर दिए है नकुल जायसवाल और सावित्री कहार तुर आगी गुंगवाते सगा झड़ी मसावन के

तो झड़ी में देखो सावन जब होते पानी ज्यादा गिरती तो कतको आगी चूल्हा जलावा धुंगियाए लगती, धुएं धुआं दहे लगती। अब तो गैस के जमाना आगे संगवारी हो, है ना। ये सुघर गीत सुने आगू बढ़त हन कार्यक्रम ला। आप मन के जिन पठोए चिट्ठी पाती हो ला पढ़त हन आप मन के गीत म छत्तीसगढ़ी गीत की फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनत हो। ये संगवारी है महावीर वार्ड भाटापारा ले श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती, श्रीमती ईश्वरी, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव, हदबंद नेवधाले आप मनाओ श्रीमती दुलारी यादव, श्रीमती प्रियंका कुमारी प्रीति, श्रीमती उमेश्वरी, श्रीमती सुनती यादव। आप मनाओ संगवारी हो रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नैला बोटसरा जानकी ले आप मनाओ, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार, मीनाक्षी उमाबाई, अंजुलता ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा, प्यारे लाल मिश्रा।

आओ आप मन हो भाटा पारा से ही दानसी रावत, दानू पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत, नीरज रावत, पेंशन बाड़ा रायपुर ले आप मन हो सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, बेबी, अदिति और तन्मय यादव, आप सबके पसंद में सुनत हैं ये गीत स्वर हवय रामायण वस्त्रकार और अनुपमा मिश्रा के गोरी कजरारी तोरनैना तोरनैना।

तो संगवारी हो गोरी कजरारी तोर नैना ये गीत स्वर दे रही है रामायण वस्त्रकार अनुपमा मिश्रा। तो कार्यक्रम ले विदा ले के पहली आप मल्ला अपन कार्यक्रम के पता बता देता हूँ जेमा अपन पसंद की गीत मन पसंद गीत जेल आप सुनना चाहता हो हमारा आकाशवाणी बिलासपुर में भेज सका था। पता है ग्राम सभा कार्यक्रम आप मन की गीत द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी बिलासपुर पिन कोड नंबर 495006। तो ये पता मा अपन मन पसंद गीत संगीत सुने बर मन भावन गीत सुने बर जरूर आप मन पत्र पोस्ट कार्ड में भेजो जाए के पहले आओ हम सब मिलके पर्यावरण के रक्षा करन बरसात के बखत सावधानी अपनाओ और अपन गांव ला हरियर स्वस्थ और समृद्ध बनाओ ये हमार सपना है। अब कार्यक्रम ले विदा ले के बेरा हो गए अब अतके के वो जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
1: देश के मयारुक रह भैया हो, जोहार। हमर जिंदगी मा कुछ तारीख मन ऐसन होते जेन ला सुरता राखे खातिर कैलेंडर देखे के जरूरत नहीं पड़े। आज 26 जुलाई ऐसने एक ठन तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है।

ये दिन हमन ला गर्व ले भर देथे। ये दिन हमन ला अपन वीर जवान मन के अद्भुत साहस के सुरता देवा थे। कारगिल के ऊंचा ऊंचा चोटी, कठिन मौसम, दुश्मन के चुनौती, हर परिस्थिति हमर सैनिक मन के आगू में रहीस। फिर उनकर हौसला हर चुनौती ले बड़े रहीस। वो मन माँ भारती के रक्षा बर अपन सर्वस्व अर्पित कर देन। आज कारगिल विजय दिवस मा मैं जम्मो वीर शहीद और वीर सैनिक मन ला श्रद्धापूर्वक नमन करत हूँ। संगवारी हो, आज के भारत अपन वीर मन ला खाली यादें नहीं करे, भलुक नवा पीढ़ी तक उनकर गाथा घलो अमरा थे। यही भावना ले ये बछर एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाले गए है। 14 जुलाई के दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल ले शुरू हुए ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के कारगिल वार मेमोरियल तक पहुंची। एकर संदेशा है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। ये यात्रा हमन ला सुरता करा थे कि राष्ट्र खातिर दे गए बलिदान कभू भुलाए नहीं जा सके। संगवारी हो, आज भारत अपन सैनिक मन के साहस के संगे संग अपन तकनीकी क्षमता ला घलो सरलग मजबूत करत है। कुछ ही दिन पाछू भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी सम्मिलित करे गए। ये आधुनिक जंगी जहाज भारते में डिजाइन करे गए है, भारते में बने हैं। इमें 75% ले ज्यादा स्वदेशी सामग्री के उपयोग हुए है। ये आत्मनिर्भर भारत के बाढ़त शक्ति के चिन्हारी है। यही महीना DRDO पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के घलो सफल परीक्षण करे है। ये सफलता पाछू हमार वैज्ञानिक और इंजीनियर मन के सामूहिक परिश्रम है। दुवे 3 दिन पाछू DRDO कुशा मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे है। संगवारी हो, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देश मन संग राजनीतिक सहयोग, भारत सरलग नवा ऊंचाई कोती बढ़त है। यही महीना के शुरू में मैं इंडोनेशिया में रहे हूं, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खातिर एक बड़का समझौता हुए है। दुनिया के भरोसा भारत के रक्षा उपकरण और तकनीक में बढ़त है। आवाओ ये कारगिल विजय दिवस में हम अपन अमर शहीद मन के नमन करन और एक सुरक्षित सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अपन संकल्प और मजबूत करन। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मन की बात के पिछला कड़ी में मैं आप मन ले कैच द रैन अभियान के चर्चा करे रहे हूं। मैं आग्रह करे रहे हूं कि बरसात के हर बूंद ला सहेजे के ये अभियान ला जन आंदोलन बनावें। कैच द रैन के संदेशा बहुत ही सोझ है। जिहां पानी गिरे, जब पानी गिरे, पानी ला उहे सहेजाओ। यही पाए के 4 जुलाई ले देश भर मा एक ठन विशेष अभियान घलो चलाए जात है। एकर अंतर्गत बरसात के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जुन्ना जल सोता मन के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण ला नवा गति दे जात है। मोला बहुते खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायत हो या सामाजिक संस्था, हर ठिया मा लोगन मन बढ़ चढ़ के भागीदारी करे हैं। कहूं जुन्ना तरिया मन ले गाद निकाले जात है, कहूं कुआं और बावली मन ला फिर जिंदगी दे जात है। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज के माध्यम बनत हैं। संगवारी हो, मध्य प्रदेश के सीधी जिला मा करीबन 1500 तरिया बनाए गए हैं। नरसिंहपुर मा अमृत सरोवर मन ला संवारे गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक मा बड़का मात्रा मा पानी सहेजे के क्षमता विकसित हुए हैं। आंध्र प्रदेश के नंदयाल मा सबो ग्राम पंचायत मन ये अभियान ले जुड़े हैं और जुन्ना तरिया मन ला फिर उपयोगी बनाए गए है। हमर शहर घलो पाछू नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ये अभियान के उत्साह

जनक परिणाम दिखत हे। आवाओ हम घलो अपन तीर तखार के कोनो एक तरिया कुआं या बावली के जिम्मेदारी लेवन, पानी के हर बूंद बचावन। आज बचाए गए हर बूंद अवैया पीढ़ी के भविष्य के सबले बड़का पूंजी है। मोर देश के मायारुक रवैया हो, कुछे दिन पाछू ग्लासगो मा कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए है। हर देशवासी भारतीय दल ला सरलग अपन शुभकामना देवत है। उनखर कामना है कि सब्बो खिलाड़ी और एथलीट मन सुंदर प्रदर्शन करें और लोगन मन के हृदय घलो जीतें। संगवारी हो, हमर युवा मन हालेज के दिन मन मा खेल कूद मा कईयों शानदार उपलब्धि प्राप्त करे हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन मा जापान ओपन के खिताब जितैया पहली भारतीय बन गए हैं। उनखर ये उपलब्धि मा पूरा देश लग गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम हा घलो लंदन मा लॉर्ड्स स्टेडियम मा अपन पहली टेस्ट मैच जीते है। ये एक ऐतिहासिक जीत है। हमर टीम हा 270 रन के बड़का अंतर ले ये मुकाबला जीते है। फिर बात खाली अतकेच नहीं है, लॉर्ड्स के लंबा इतिहास मा ये महिला टीम के पहली टेस्ट मैच रहिस। 1983 मा इही मैदान मा भारत हा अपन पहली क्रिकेट विश्व कप जीते रहिस। अब हमर नारी शक्ति है यहाँ देश के नाव उज्जर करे है। संगवारी हो, कुछ नानुक प्रयास ऐसन घलो होते जेन बहुत मायना रखते। मुला केरलम मा एर्णाकुलम के दक्षिण चित्तूर मा खेलकूद के ऐसने एक ठन प्रयास के बारे में पता चले है। वहाँ के एक स्कूल मा संस्कृत क्लब है। यहाँ के शिक्षक अभिलाष जी बड़ अनूठा रकम ले संस्कृत ला लोकप्रिय बनावत हैं। ये प्रोजेक्ट ला अक्षर कंदूक नाव दिए गए है। एमें संस्कृत के आखर मन ला फुटबॉल मा उपयोग होए वाला शब्द मन ले जोड़ के आसान रकम ले समझाए जाते। एखर ले सीखे मा आनंद मिलते, संगे संग खेल ले लोगन मन के जुड़ाव घलो बाढ़ते। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, पाछू इतवार विक्रम एक एकर सफल प्रक्षेपण ले हर देशवासी गौरव ले भरे हुए है। हम सबो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेन। ये निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत के पहली रॉकेट है। हमर युवा नवाचारी मन वो कर देखाइन जेखर कल्पना तको मुश्किल रहिस। वो मन गजब के कौशल जज्बा और धैर्य दिखाइन। लंबा बखत तक हमर अंतरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्र पर बंद रहिस। ये क्षेत्र में रुचि रखने वाला बने अकन युवा मन ल अपन प्रतिभा दिखाए के मौका नहीं मिल पावत रहिस। युवा हित ल देखत हुए हमन अंतरिक्ष क्षेत्र ल निजी क्षेत्र पर खोलेन। आज ओखर परिणाम दुनिया देखत है। संगवारी हो, हमर युवा संगवारी विज्ञान में घलो भारत के मस्तक ऊंचा करत हैं। साइंस ओलंपियाड दुनिया के सबले महत्तम के प्रतियोगिता में एक है। एमें बड़का संख्या में विद्यार्थी मन भाग लेते हैं। इही महीना भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित के ओलंपियाड होइस। ये प्रतियोगिता मन में भारतीय दल के प्रदर्शन शानदार रहिस। भौतिकी ओलंपियाड मा हमर सब्बो पांच विद्यार्थी मन स्वर्ण पदक जीतिन और भारत पहला स्थान प्राप्त करिस। पाछू एक दशक मा होए हर भौतिकी ओलंपियाड मा हमर देश के विद्यार्थी मन स्वर्ण या रजत पदक जरूर जीते हैं। रसायन शास्त्र ओलंपियाड मा घलो हमर सब्बो विद्यार्थी मन स्वर्ण पदक जीतिन। ये अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे है। जीव विज्ञान ओलंपियाड में घलो हमर सबो विद्यार्थी मन पदक जीते हैं। एमें एक स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित है। उन्हें गणित ओलंपियाड में हमर विद्यार्थी मन दो स्वर्ण और चार रजत पदक अपन नाव करिन। मुला देश के युवा शक्ति में बहुते गर्व है। ये देख के खुशी होते कि भारत में ओलंपियाड और हैकाथान के संस्कृति सरलग बढ़त है। मुला विश्वास है
कि देश के ज्यादा ले ज्यादा

सारा युवा ऐसन फोरम मा अपन रुचि देखाही और भारत के ध्वजा घलो लहराही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, जब हुनर घलो हो और कुछु करे के जज्बा घलो हो ता हर रद्दा आसान हो जाते। कश्मीर के पारंपरिक चटाई वगूला लेके आज जेन प्रयास हुआ थे ओमें एखरे झलक मिलते। एला सरकंडा और धान के पैरा ले तिनका ले तैयार करे जाते। ये चटाईला बनाए के परंपरा कईयों बछर जुन्ना है। एखर बर सबले पहली कश्मीर के दलदली इलाका के घास और सरकंडा के कटाई करे जाते। धूप मा सुखाए के बाद छटाई होते और फिर शुरू होते हाथ ले बुनाई के काम। दू कारीगर मनला एक चटाई बनाए मा करीबन 4 दिन लगते। ये चटाई अनूठा घलो है और पर्यावरण हितैषी घलो है। एक बड़का खासियत ये है कि आप मनला गर्मी मा एखर ले ठंडक मिलही और ठंडी मा गर्माहट। पहली ये कश्मीर के हर घर मा दिखत रहिस, फिर पाछू कुछ बछर मन मा एखर उपयोग कम होई लगे रहिस। ऐसन मा श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनखर बेटी तंजीला जी हा एक संकल्प करिन। दोनों वगू क्रॉफ्ट के परंपरा ला एक नवा जिंदगी देहे मा जुट गईन। गुलाम हुसैन जी बहुते साधारण परिवार ले आते। वो मनला ये काम मा कईयों रकम की चुनौती घलो आईस, फिर वगू के संरक्षण के उनखर संकल्प अडिग रहिस। देखते देखत उनखर ये प्रयास ले बहुत अकन लोगन मन जुड़त गईन। गुलाम हुसैन जी हा ये कौशल ला खूब बढ़ाइन। अपन मिशन मा उनला स्थानीय स्तर मा सरकारी सहयोग घलो मिलिस। आज तेजी ले लोकप्रिय होवत वगू देश के आने हिस्सा मन मा घलो पहुंचत है। मोला ये प्रयास ले जुड़े सबो लोगन ऊपर बहुत गर्व है। आज हम सबो मन के स्थानीय उत्पाद ऊपर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र ला लेके चलत हन। ऐसे मा कश्मीर के वगू घलो आप मन के घर के हिस्सा बने, एखर बर एक घाव खचित सोचू। संगवारी हो, हमर देश मा चाय खाली एक ठन पेय नहीं है, ये अपनापन घलो हवे। बिहिनिया के शुरुआत हो, दोस्त मन ले भेंट हो या परिवार के संग कुछ पल बिताना हो, चाय हर मौका के हिस्सा बन जाते। वैसे ता आप मन घलो बने अकन जानथव मोर चाय ले नता का है। फिर आज मैं जेन चाय के चर्चा करत हौ वह खाली स्वादे नहीं देवाए, भलो कईयों बहिनी मन के जिंदगी मा आत्मनिर्भरता के नवा सुगंध घलो घोर दे है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के लखीवाला गांव मा स्व सहायता समूह ले जुड़े माई लोगिन मन विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार करे हैं। इमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्चा हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसन प्राकृतिक सामग्री शामिल करे गए है। अपन अनोखा स्वाद और गुण के कारण ये चाय है बहुत कम वक्त मा लोगन के बीच खास पहचान बनाए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल मा ये हर्बल चाय ला खूबे सराहना मिले है। विदेश ले आए लोगन मन हा घलो एमे रुचि दिखाए हैं। संगवारी हो, सबले प्रेरक बात एखर शुरुआत है। ये जम्मो प्रयास खाली 1 लाख रुपया ले शुरू होए रहिस। आज ये ब्रांड देश के बड़का संस्थान मन तक पहुंच चुके हैं। ये पहल हमन ला बताते कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और माई लोगिन मन के आत्मविश्वास साथ आते त एक नानुक प्रयास घलो बड़का बदलाव के शुरुआत बन जाते। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, आज देश भर मा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम ले लोगन मन प्रकृति के प्रति अपन दायित्व निभावत हैं। जब समाज ये भावना ले जुड़ते तब बहुते सुंदर
और प्रेरक उदाहरण आघू।

उम आथे। संगवारी हो, अहमदाबाद में जनभागीदारी के अद्भुत शक्ति दिखे है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटा के भीतरी 3.5 लाख ले ज्यादा पौधा रोपे गईस। एमें 25,000 ले ज्यादा लोगन मन जुड़ियाइन। स्कूली लयिका, एनसीसी कैडेट, स्वयं सेवक और आम नागरिक सबो मन ये अभियान में हिस्सा लेन। अवैया बछर मन में यही पौधा मन ह एक घना शहरी वन के रूप ले ही। ये प्रयास ल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करे गे है। संगवारी हो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत यूपी मा घलो जनशक्ति के अद्भुत संकल्प देखे ल मिले है। उहां एके दिन मा 12 जुलाई के 35 करोड़ ले ज्यादा पौधा लगाए गए है। यूपी के सांसद होए के नाता मोर बर ये घलो विशेष गर्व के बात है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, पेड़ खाली मनखे मन बर नहीं होए, वो अनगिनत जीव मन के घर घलो होते। गुजरात के गिर के जंगल मा करीबन 60 बछर बाद इंडियन ग्रे हार्न बिल फेर बसेरा बनावत थे। ये गिर मा कईयों बछर ले होवत संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयास के परिणाम है। हार्न बिल ला जंगल के किसान कहे जाते। ये फल खाते और बीजा मन ला दूर दूर तक पहुंचाते। यही बीजा मन ले जंगल में नवा पेड़ उगते। यही रकम एक पक्षी जंगल ला फेर हरा भरा बनाए मा मदद करते। मैं आप सबो मन ले कहूं, हम सबो मन अपन जिंदगी के कोनो विशेष मौका ला प्रकृति ले खचित जोड़न। एक पेड़ माँ के नाम लगावन। आज के लगाए एक नानुक पौधा अवैया पीढ़ी खातिर हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य के विरासत बन सकत है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हम सबो मन जानथन कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरा दुनिया के पर्यावरण पर बड़का चुनौती बने हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरा कईयों बछर तक प्रकृति ला नुकसान पहुंचावत रही थे। यही पाए के प्लास्टिक के सही निस्तारण बहुते जरूरी है। संगवारी हो, बिहार के सीतामढ़ी मा वेस्ट टू वेल्थ के शानदार उदाहरण आगू मा आए है। यहाँ कचरा के रिसाइकलिंग कर ओखर ले आकर्षक बेंच बनाए जाते। एक बेंच तैयार हुए मा करीबन 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाते। ये मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होए के संगे संग पर्यावरण हितैषी घलो होते। एला सरकारी स्कूल, बगीचा और सार्वजनिक स्थल मा लगाए जाते। एखर माध्यम ले लोगन मन मा पर्यावरण संरक्षण ला लेके जागरूकता घलो बढ़त है। ये प्रयास में स्थानीय इकाई के साथे जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण भूमिका है। एखर ले स्थानीय स्तर में रोजगार के अवसर घलो पैदा होवत थे। सीतामढ़ी के ये प्रयास हमन ला बताते कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज खाली एक नारा नहीं, भलुक हमर जिंदगी के हिस्सा बनत जात है। संगवारी हो, आप मन ला सुरता हो ही, पाछूदारी मन की बात मा मैं गणेश उत्सव के बात करे रहे हूं। मैं आग्रह करे रहे हूं कि हमन ला अपन देश के माटी ले बने गणेश जी के पूजा करना चाहिए। जेन पीओपी ले बने गणेश जी होते या विदेश ले आए गणेश जी के मूर्ति होते, ओखर जगह हमन ला देश के माटी ले बने गणेश जी ला घर मा स्थापित करना चाहिए। ये विषय मा कईयों लोगन मन मुला संदेशा पठोए हैं और अपन विचार रखे हैं। लोगन मन ह बताइन कि वो मन मोर आग्रह ला अपनाए हैं। वो मन स्थानीय माटी ले तैयार होवैया गणेश जी ला स्थापित करे के संकल्प ले हैं। लोगन मन लिखे हैं कि मन की बात मा पहलीच एखर ऊपर चर्चा होइस, एखर ले वो मन ला सही बखत मा सही कदम उठाए मा सहायता मिलिस। मैं एक घाव फेर अपन आग्रह दोहरावत हूँ।
ये पैत गणपति

पूजा माँ देश के माटी ले बने गणेश जिला अपन घर में स्थापित करें, उनकर पूजा करें। आप मन के ये प्रयास घलो एक रकम ले प्रकृति के पूजा हो ही। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, अब मैं आप मन ला एक ऐसन मनखे के बारे में बताहूं जेखर बारे में सुन के आप मन ला बहुते गर्व हो ही। एक ऐसन मनखे जिन विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम

गर्व होही। एक ऐसन मनखे जेन विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम करत हैं, दुनिया में जिनकर पहचान बनत है, फिर एकर बाद घलो वो अपन जड़ ले गहराई ले जुड़े हैं, मौका मिलतेच वो अपन माटी के सम्मान करना नहीं भुलावें। वो मनखे हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लाइश्राम जी। नाव उनकर रोनाल्डो है, फिर काम ले वो मन एक खगोल भौतिक वैज्ञानिक हैं। वो मन जापान में काम करते हैं और युवा आकाश गंगा के एक विशाल समूह के खोज करने वाला दल के हिस्सा रहे हैं। आप मन जानना चाहो कि वो मन आखिर का करे हैं? असल में वो मन ये जम्मो समूह के नाव मणिपुर के एक सुंदर झील ले जोड़ के लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखे हैं। लोकटक ताजा पानी के बहुते बड़ा झील है। लोकटक झील में तौरत फूम डी मिल के एक अनोखा प्राकृतिक दृश्य बनाते। ऐसन लगते कि विशाल समुद्र में नान नान द्वीप तौरत है। यही रकम ब्रह्मांड में ये युवा आकाश गंगा घलो एक विशाल संरचना के निर्माण करते। आज मणिपुर के लोकटक खाली देश के नक्शेच में नहीं भलुक विशाल ब्रह्मांड में घलो अपन चमक बगरावत है। ये उपलब्धि हर भारतीय के गौरव बढ़ाने वाला है। एकर ले हमार युवा संगवारी मन ला सीख मिलते कि वो मन अपन परंपरा ले जुड़े रही के घलो नवा फूलिंग ला छू सकत हैं। ये ऐसन जड़ है जिन सितारा मन के दुनिया ला घलो जगमगा सकत है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, कुछ दिन बाद 7 अगस्त के हमर देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाही। ये मौका मा हम अपन बुनकर भाई बहनी मन के कौशल और उनकर सृजनशीलता के उत्सव मनाथन। हमर ये संगवारी कई पीढ़ी ले चले आत परंपरा मनला आगू बढ़ावत हैं। संगवारी हो, हथकरघा ले बने हर परिधान कोनो ना कोनो क्षेत्र समुदाय और एकर ले जुड़े असंख्य लोगन मन के कहनी ला आगू में लाथे। ये वो लोगन मन है जिन गर्व के संग भारत के सांस्कृतिक विरासत ला संजोए में जुटे हैं। आज के दिन मोर आग्रह है कि हम हस्तकला ला प्रोत्साहित करके अपन बुनकर संगवारी मन के सम्मान करन। आवाओ हम वोकल फॉर लोकल के भावना ला और सशक्त करन। संगवारी हो, आज देश में जेन रकम हथकरघा ला बढ़ावा दिए जात है, एखर ले बड़का संख्या में लोगन मन के जिंदगी बेहतर होवत है। पोचमपल्ली ले पटना और कुथमपल्ली ले कच्छ तक एखर कईयो उदाहरण देखे ला मिलते। आज ऐसने कईयो लोगन और समूह है जेन हथकरघा के हमर गौरवशाली परंपरा ला नवा ऊर्जा और चिन्हारी देवत हैं। कोनो पोचमपल्ली इकत के सुंदर परंपरा ला आगू बढ़ावत है, तो कोनो महिला बुनकर मनला जोड़ के ऊनी उत्पाद बनावत है। कुछ लोगन मन केरलम के पारंपरिक कसावू कला ला संरक्षित करत हैं। एखर ले हमर दाई बहनी मनला रोजगार घलो मिलत है। संगवारी हो, एक ठन और विषय जेखर मैं विशेष रूप ले उल्लेख करना चाहूं, वो है खादी। हम सबो मन जानथन कि खादी महात्मा गांधी ला बहुते प्रिय रहिस। पहाए कुछ बछर मन मा खादी बने अकन लोकप्रिय होए है। पाछू 12 बछर मा एकर बिक्री 6 गुना बढ़े है। बिक्री के ये आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपया के नजीक पहुंच चुके हैं। मोर आप सबो मन ले आग्रह है कि अवैया तिहार में खादी के कोनो न कोनो हथकरघा के कोनो न कोनो हस्तशिल्प के कोनो न कोनो उत्पाद खचित बिसावें। मोर देश के मायारुक रवैया हो, अगर आप मन ले पूछे जाए कि भारत के कतका रकम के संगीत यंत्र है, तो आप मन सोच में पड़ जाहु। ऐसन ये पाए के काहे कि हमर यहां बहुत अकन वाद्य यंत्र और उनखर ले जुड़े परंपरा है।
इही रकम के एक यंत्र हे।

त्रिपुरा के चोंग प्रेंग, ये उहां के आदिवासी समुदाय मा बने अकन लोकप्रिय है। बांस ले बने ये वाद्य यंत्र मा 3 ठन तार होते। एखर ले निकले धुन बहुते मधुर होते, जेन सरोद ले मिलते जुलते। कुछ कारण ले युवा मन के बीच एखर लोकप्रियता कम होके रहिस। ऐसे मा सूरज कुमार देव वर्मा जी हा एला फेर लोकप्रिय बनाए के संकल्प लेन। आज उनखर प्रयास रंग लावत है। वो मन चोंग प्रेंग के संग उहां के आने पारंपरिक वाद्य यंत्र घलो बजावत रही थे। कोक बोरोक लोक गीत, बाउल गीत, बंगाली लोक वो मन ला खूबे भाथे। अब मैं आप मन ला एक नानुक क्लिप सुनाना चाहता हूं। ये संगीत ला आप मन कभू भूला नहीं पाहू।

0: संगवारी हो, मोला विश्वास है एला सुन के आप मन के मन ला बहुते अच्छा लगे हो ही। मोला देव वर्मा जी ऊपर बहुते गर्व है। पारंपरिक संगीत ला लोकप्रिय बनाए के उनखर प्रयास बहुते सराहनीय है। मोर आग्रह है कि आप मन घलो अपन तीर तखार के पारंपरिक वाद्य यंत्र के जानकारी सोशल मीडिया मा खचित साझा कराओ। आप मन के ये प्रयास आने मन ल घलो पारंपरिक भारतीय संगीत ले खचित जोड़ही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, काली 27 जुलाई के भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व मा कईयों ठन प्रेरक रूप रहिस, फिर उनखर हृदय के सबले नजीक एक शिक्षक की भूमिका रहिस। वो मन लयिका और युवा मन ला बड़का सपना देखे खातिर प्रेरित करत रहिन। संजोग ले इही हफ्ता हम गुरु पूर्णिमा के पावन परब मनाबो। हमर दाई ददा हमर पहली गुरु होते, स्कूल के शिक्षक हमन ला आखर ज्ञान देते। गुरु पूर्णिमा ऐसने सबो गुरु मन के प्रति कृतज्ञता जताए के मौका है। मैं देश के सबो शिक्षक और गुरुजन मन ला श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करत हूँ। संगवारी हो, कुछ हफ्ता बाद हम अपन स्वतंत्रता के महापर्व घलो मनाबो। 15 अगस्त हर भारतीय खातिर गर्व के दिन है। ये वो असंख्य वीर मन के सुरता करे के दिन है जेन मन भारत माता के स्वतंत्रता खातिर अपन सब कुछ समर्पित कर दें। उनखर त्याग और तपस्या के कारण आज हमर हाथ में तिरंगा है। ये तिरंगा मा हमर संविधान के आदर्श है। संगवारी हो, पाछू कुछ बच्छर मन मा हर घर तिरंगा अभियान है जम्मो देश ला एक अद्भुत भावना ले जोड़े है। हर घर हर गली मा तिरंगा के उत्सव दिखाई देते। ये बच्छर घलो हमन ला हर घर तिरंगा अभियान ला पूरा उछाह के संग आगू बढ़ाना है। अपन घर मा पूरा सम्मान के संग तिरंगा फहराना है। संगवारी हो, हरे बच्छर 15 अगस्त ले पहली आप मन मोला बहुत अकन विचार और सुझाव पठोथाओ। ये बच्छर घलो आप मन अपन विचार मई GOV मा खचित साझा कराओ। मोला आप मन के सुझाव के अगोरा रही। संगवारी हो, मन की बात मा आज अतकिच। अवैया महीना हम फेर मिलबो। देशवासी मन के अनेक नवा उपलब्धि और प्रेरक प्रयास मन के संग, तब तक खातिर मोला अनुमति देवाओ। गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद। जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है

0: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
2: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
5: अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जुलाई को मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इस युद्ध का अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

वर्ष 1999 में कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के कब्जे से कई महत्वपूर्ण चोटियों को मुक्त कराया। कारगिल की ऊंची बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई इस लड़ाई ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और समर्पण को पूरी दुनिया के सामने रखा।

कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में लड़े गए प्रमुख संघर्षों में से एक माना जाता है, जहां -10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। कई स्थानों पर सैनिकों ने 16,000 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर अभियान चलाया। साल 1999

1999 में पाकिस्तान की ओर से समर्थित घुसपैठियों और सैनिकों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और आसपास के कुछ ऊंचे इलाकों में भारतीय सीमा के भीतर रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचाई पर लड़ाई के बावजूद भारतीय सेना ने कई अहम चोटियों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया। यह संघर्ष लगभग 2 महीने चला और 26 जुलाई को भारतीय सेना की सफलता के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में कई सैनिक शहीद हुए और अनेकों घायल हुए। शहीद हुए सभी भारतीय जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शत शत नमन करते हैं उन वीर नायकों को जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया और हमें सिखाया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है।

0: श्रोताओं, अब दीजिए अनुमति अपनी साथी आरती को कार्यक्रम रजनीगंधा से। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर

0: उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और

0: देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
2: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes in

आइए अब सुनते हैं अनवर और मीना पटकी की आवाजों में दूल्हा बिकता है फिल्म का गाना। गीत गुलशन कानपुरी ने लिखा है, संगीत बप्पी लहरी का।

मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह को सुनिए। फिल्म का नाम है परवरिश, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने सुना परवरिश फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है कर्म, गीत लिखा है राजकवि तुलसी ने, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जय भरत जी की दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक संगीतकार की बातें। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है अनूठे संगीतकार सुधीर फड़के पर।

सुधीर फड़के का नाम लेते ही स्मृति में ज्योति कलश छलकने लगता है और संगीत के पवित्र सुरों से मन आंगन आलोकित हो जाता है।

में सुधीर फड़के ने बहुत फिल्में तो नहीं की हैं, पर मराठी सिने जगत और गैर फिल्मी संगीत जगत में सुधीर फड़के एक शीर्षस्थ संगीतकार रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का असर मुंबई के फिल्म जगत पर बड़ा गहरा पड़ा था। मराठी क्षेत्रीय सिनेमा पर भी इसका झटका देखा गया। स्टूडियोज बंद होने लगे, इसलिए वो कलाकार जो कभी स्टूडियो के नौकरी पेशा कर्मचारी होते थे मुसीबत में पड़ गए थे। मजबूर होकर उन सबको फ्रीलांसिंग यानी स्वतंत्र काम करना पड़ रहा था। उन दिनों फिल्म निर्माण से जुड़ी चीजों के दाम इस कदर बढ़ गए थे कि मराठी सिनेमा ठप्प पड़ गया था। 1945 में मराठी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। सन 1946 में सिर्फ दो मराठी फिल्में आईं, रुक्मणी स्वयंवर और सासू वास। फिल्म रुक्मणी स्वयंवर से सुधीर

सुधीर फड़के ने संगीत की शिक्षा कोल्हापुर में पाध्य गुरुजी से पाई थी। उनकी आवाज गजब की थी, उतार चढ़ाव ऐसे कि शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता मुग्ध हो जाएं। गायक और संगीतकार दोनों ही रूपों में सुधीर फड़के ने अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाया।

आगे चलकर मराठी गीतकार माडगुलकर और निर्देशक राजा परांजपे और स्वयं गायक और संगीतकार सुधीर फड़के की एक त्रिमूर्ति बन गई, जिसने ऐसे कालजयी गीत दिए कि दुनिया चकित रह गई। आइए सुने ये गीत।

सुधीर फड़के ने 100 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता स्वयंवर, माया बाजार, पुड़चा पाउस, जीवाचा सखा, लाखाची कोष्ट, इन मीन 3.5 और सुवासिनी वगैरह।

हिंदी फिल्मों में सुधीर फड़के को लाने का श्रेय जाता है वी शांताराम को। उनकी 1946 में आई फिल्म गोकुल सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म थी। सन 1959 में आई गोकुल का चोर।

सुधीर फड़के ने किराना घराने के ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी से फिल्मों में गवाया और सिनेमा पारंपरिक किराना घराने की सुगंध से सुवासित हो उठा। सुधीर फड़के ने 1954 में राजा नेने की फिल्म पहली तारीख में भी संगीत दिया था। किशोरदा ने इस फिल्म में एक गाना गाया था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। आइए अब सुने सुधीर फड़के का स्वरबद्ध किया ये गीत।

मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसकी रचना मराठी कवि ग. दी. माडगुलकर ने की थी। संगीत और गायन स्वयं सुधीर फड़के का था।

सुधीर फड़के अपनी सीधी साधी और सरल धुनों के लिए याद किए जाते हैं। उनकी धुनें आपकी जुबान में रच बस जाती हैं। उनमें ना तो कोई कलाबाजी है और ना जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आसमान से बरसती बूंदें बूंदें नहीं हैं, कविताएं हैं। बरस रही है रूमानियत आसमान से। बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, बारिश त्योहार है। और इस त्योहार को कमरे में बंद होकर नहीं मनाया जा सकता। बारिश खिड़की से नहीं देखी जाती, बिना छाते या रेनकोट के निकल जाना चाहिए सराबोर होने के लिए, क्योंकि बारिश तो धरती का उत्सव है, बारिश तो हमारा त्योहार है।

हमने कहा ना कि बारिश तो धरती का उत्सव है। जैसे ही मौसम की पहली बूंदें पड़ती हैं, मुस्कुराने लगते हैं पेड़ पौधे। देखिए तो कैसे पत्तों का रंग उजला हरा हो जाता है, घास जैसे नाच उठती है, फूलों पर ठहरी बारिश की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, पंछी चहचहाते हैं तो लगता है कुदरत के इस उत्सव में चल रही है कोई जुगलबंदी। ऐसे मौसम में नदियां और तालाब भी झूम पड़ते हैं, झरने भी गुनगुनाते हैं, बादल छेड़ देते हैं कोई राग। ऐसे मौसम में उदासी घुल जाती है, धुल जाती है। चलो बारिश में भीगने निकल पड़ो।

बारिश सबको खुश नहीं करती, बारिश किसी किसी को उदास भी करती है। सवाल यह है कि इतनी झूमती हुई खुशियों वाली बारिश किसे उदास करती है? बारिश उसे उदास करती है जिसका साथी उसके पास नहीं। बारिश उसे उदास करती है जो किसी का हाथ पकड़कर सराबोर होने निकल नहीं सकता। बारिश उसे उदास करती है जो अकेला है। बारिश अकेले लोगों के लिए एक तकलीफ है। अकेले लोगों के लिए बारिश बहुत सारी यादों की जुगनू लेकर आती है जो उनके अकेलेपन को रोशन करते हैं।

0: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता।
0: हम अभी हाजिर हुए।

तपती धरती पर राहत के कुछ छींटे पड़े। जब ठंडक मिली तो सब झूम उठे। बारिश का ये मौसम धरती के चहेतों के लिए काम का मौसम है। मेहनत के पुजारी, धरती पर बीज बिछाने वाले किसान, जो पूजा करते हैं इस धरती की, बीज बिछाते हैं प्यार के, ताकि दुनिया में कोई भी भूखा न रहे। बारिश के इन दिनों में भीग भीग कर खेतों में काम करने वाले किसानों को सलाम, उनकी मेहनत, उनकी लगन को सलाम। सचमुच हम उनके कर्जदार हैं।

चलो मिलकर भीगें बारिश में, तुम कुछ गुनगुनाओ और तुम्हारे साथ जुगलबंदी करे ये बारिश। इस झूमती बारिश में शहर की सड़कें नापने

का लुत्फ ही कुछ और होता है। शहर अगर समंदर के किनारे हो, लहरों में सराबोर होने का मजा ही कुछ और होता है। अगर पास में है कोई नदी, तालाब या झरना, तो उसका तिलस्म बारिश में देखते ही बनता है। बारिश रूमानियत का मौसम है। बारिश की इस रूमानियत को किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

पहलू विरह भी है। जब कोई अपना दूर हो तो शिद्दत से पुकारना चाहिए उसे, और इंतजार करना चाहिए उन दिनों का जब मिले अपने साथी का साथ।

हाँ, तो इस बारिश में क्या कर रहे हैं आप? अपनों की टोली के साथ पिकनिक का कोई इरादा है, या फिर बस कमरे में बैठकर खिड़की से बारिश के छींटे पड़ते देखने हैं? अगर आपके अपने साथ हैं तो ये बारिश आपके लिए है एक संगीत से भरा मौसम, और अगर आप अकेले हैं तो ये बारिश आपके लिए विरह की चुभन लेकर आई है। जिंदगी का

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
5: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
5: कहीं करती होगी हो मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
5: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में

0: दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों

0: गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistan.